सुप्रभात। मीडिया वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अब रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का विचार मंथन।

आर्यभट्ट ने कहा है कि एक पल में मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। ये था आज का विचार मंथन। और वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले करते हैं मातृभूमि की वंदना, देश की वंदना। जिस माटी में जन्म लिया

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रचना। श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है, प्रभु नाम से प्रभु धाम तक, और ईश्वर का नाम वो मंत्र है जिसके अनवरत जाप से हमें प्रभु के दर्शन मिल सकते हैं।

नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये शिव भजन। श्रोताओं, भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे कुछ भी कहे संसार, भक्ति में ही है परम सुख, यही है समस्त वेदों का सार।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देवी भजन। भक्ति करने से ही कृपा बरसती है और कृपा किसी भी समय कुछ भी बदल सकती है।

0: ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना, जिसमें स्वर था हरिहरन का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रकाश किरण। आज इसमें सुनिए महावीर वाणी।
1: मरदुवा जियदुवा जीवो अयदाचारस्य शिच्छेदा हिंसा। किसी जीव का मरना या जीना हिंसा या अहिंसा का रूप नहीं है। यत्नाचार का नाम हिंसा और यत्नाचार का नाम अहिंसा है। रागादीन मनुप्पा अहिंसकत्तम ति देशियम समये तेसिं च उपत्ति हिंसे तिजिने दिठा। राग द्वेष आदि का उत्पन्न न होना यही अहिंसा है। राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है। पादोसिय अधिकरणीय काय

द्वेष करना, हिंसा के साधन ग्रहण करना, दुर्भावना से शरीर की क्रिया करना, दुख देने वाले कार्य करना, प्राणों अर्थात आयु, इंद्रिय, बल, श्वास का घात करना, इन पांच प्रकार के प्रयोगों को हिंसा की क्रिया कहते हैं। सब्बे सिजीवियं पियं आयतुले पयासु सब्बं जगन्तु समयानुपेहि अहिंसा तसथावर सब्बभूय खेमं करी। सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है, इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। अहिंसा

मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यदि मेरे कारण से जीवों को हानि होती है तो यह इस लोक और परलोक के लिए किंचित भी श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी नहीं है। पाणि वह मुसावाद अदत्त मेहुण परिग्रहा विरदो एस चरिताचारो पंजविहो हो दिनदंबो। प्राणियों की हिंसा, मृषावाद अर्थात असत्य भाषण करना, अदत्त ग्रहण अर्थात चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पांचों से विरक्त होना, यही पांच प्रकार का चारित्र धर्म कहलाता है।

0: माया जह पुत्तम बड़ेसु।
1: सज्जन, पृथ्वी पर विहार करते हुए किसी भी प्राणी को कभी भी पीड़ा नहीं देते। वे सभी जीवों पर वैसे ही दया भाव रखते हैं जैसे कि एक माता अपने पुत्र आदि पर वात्सल्य रखती है।
0: जल चंदन ससे भूतावरमणि तहणरसर्वाणाम नकरन्ति कुणैजः अत्युज्जयम् हिद मधुरमिद वैणम्।
1: पानी, चंदन, चंद्रमा, मोती और चंद्रकांत मणि भी उतना आनंद नहीं पहुंचाते जितना आनंद सार्थक, हितकर और मधुर विचार प्रदान करते हैं।
2: प्रकाश किरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे महावीर वाणी, स्वर था मधुर शास्त्री का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। कृषि सामिकी में आज सुनिए ग्रीष्मकाल में फलदार पौधों की सुरक्षा विषय पर जानकारी।
1: देखो भैया, कड़ी धूप से तापमान बढ़त है और गर्म हवाएं जिन्हें लू कहते हैं जे चलती हैं। इन हवाओं के चलवे से वातावरण की आर्द्रता या नमी धीरे धीरे घटके अत्यंत कम हो जात है। पौधों से पानी की निकासी बढ़ जात है, जौन की पूर्ति सिंचित क्षेत्रों में भी नहीं हो पाए। असिंचित क्षेत्रों में भूमि में नमी अक्सर कम होत है, जौन के कारण पौधा आवश्यक जल शोषित करवे में असमर्थ हो जाते हैं और जा समस्या और भी जटिल हो जात है। ऐसे सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में पानी के शोषण और निकासी की मात्रा में संतुलन बिगड़ जात है। ये कारण पौधों की आवश्यक क्रियाएं जैसे पोषक तत्वों को भूमि से शोषण रुक जात है। एक फलस्वरूप शुरू में पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं, रात में संतुलन में सुधार होवे से पुनः वे सीधी हो जाती हैं या ठीक हो जाती हैं और अधिक समय तक असंतुलन बने रहवे के कारण पत्तियां झुलस के मर जाती हैं, नई शाखाएं सूख जाती हैं, पौधों की वृद्धि शिथिल पड़ जात है, फूल और फलों की संख्या में गिरावट आ जात है। अक्सर जो देखो गौ है कि अमरूद के पौधों की अपेक्षा केला के पौधों को अपेक्षाकृत ज्यादा हानि होते। ऐसे अधिक गर्मी और लू वाले स्थानों पे केला की व्यावसायिक खेती सफल नहीं है। तेज गर्म हवा से पत्ता फटके नष्ट हो जाते हैं और जो भी देखो गौ है कि मुख्य तना और शाखाओं की छाल फटके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो नुकसान आम के वृक्षों में भी बहुत ज्यादा देखो गौ है। नमी के उतार चढ़ाव के कारण नींबू और अनार के फल बरसात के शुरू होते ही फट जाते हैं, जिन्हें सस्ते दाम पे बाजार में बेचवे से किसान को आर्थिक नुकसान उठाने पड़ा थे। यही तरह से ग्रीष्मकाल में फलदार पौधों को भी हानि पहुंचा थे। उत्पादक को आर्थिक हानि से बचवे के लाने कछु सावधानियां और उपाय अपनावो बहुत जरूरी है। जैसे कि वायुरोधक वृक्ष लगाएं, उद्यानों के चारों तरफ ऊंचे और घने वायुरोधक पौधों को लगावे की सलाह दी जात है, काहे कि जे फलदार

0: वृक्षों की गर्म और तेज हवाओं से रक्षा करते हैं, साथ ही साथ बर्फीली और ठंडी हवाओं से भी रक्षा करते हैं। वायु प्रतिरोधी पौधा बाग की स्थापना के समय या पहले ही से लगा लेने चाहिए। वायुरोधक पौधा अपनी ऊंचाई से 4 गुनी दूरी तक बाग के पौधों की रक्षा करने में समर्थ पाए गए हैं। देसी आम, जामुन, इमली, बेल, आंवला, बेर के पौधा वायुरोधक के रूप में लगावे की सलाह दी जाती है। इन पौधों से प्राप्त फलों की बिक्री द्वारा आमदनी भी हो जाती है और ये अपने काम के भी रहते हैं। इनके अतिरिक्त नीम, शीशम, सिरस जैसे जो पौधा हैं, इन्हें भी लगाओ जा सका है। ग्रीष्म काल में अवरोध परत को उपयोग करवे से भूमि की नमी और तापमान दोनों नियंत्रित रहते हैं, साथ ही साथ खरपतवारों की वृद्धि कम होते है और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहते है। घास, पैरा, भूसा, सूखी पत्तियां, पौधों के डंठल और काली पॉलिथिन सीट को प्रयोग अवरोध परत के लाने करो जा सकत है। छोटे पौधों की रक्षा के लाने मंडप और शेड की व्यवस्था कर वो बहुत लाभदायक है। प्रत्येक पौधा के चारों कोनों पे भूमि में पौधा की ऊंचाई से अधिक लंबे बांस के टुकड़ा गड़ा के ऊपर घास फूस को छप्पर बना दो जात है। ऐसे संरक्षण से छोटे पौधों के मरवे को प्रतिशत बहुत कम हो जात है। साधारण अनाज के डंठलों, पुआल, कागज, बोरा इन सबको पूरे पेड़ के चारों तरफ लपेट के ए तरह से बांध देने चाहिए कि तना और पेड़ तक हवा ना जाए। जब विधि बहुत लाभकारी होत है। और भैया, सिंचाई के द्वारा वातावरण की आर्द्रता में सुधार होत है। सिंचाई की आवश्यकता भूमि की किस्म और पौधों की उम्र पे निर्भर करत है। भारी भूमि में सिंचाई को अंतराल हल्की मिट्टी की अपेक्षा अधिक रखने चाहिए। सिंचाई थालों में करने चाहिए। थालों में खरपतवार ना बढ़ने दें। टपका विधि के द्वारा कम पानी की आवश्यकता होत है और सर्वोत्तम विधि भी है। अमरूद या अन्य जाति के पौधों में जो मृग बहार की फसल दे हैं, उनकी सिंचाई ग्रीष्म काल में ना करें। आम, अनार जैसे पौधों की सिंचाई करने चाहिए ताकि फलों की बाढ़ और उनको रूप रंग उत्तम रहे और उन्हें सुरक्षित रखो जा सके। सीताफल, आंवला और बेर के पौधों को कम पानी की आवश्यकता होत है। नींबू के पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होत है। सिंचाई के थाले बना समय पौधों के तनों के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें ताकि पानी को सीधो संपर्क तना से ना होए। बोर्डो लेप को प्रयोग करें। गर्मियों में पौधों के तने पे चूना और नीला थोथा के घोल को लेप लगावे से छाल के फटवे को डर नहीं रहे। छाल यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो ओखों तेज चाकू से खुरच के ए स्थान पे लेप कर देने चाहिए। लेप बनावे के लाने 1 भाग चूना, 1 भाग नीला थोथा और 10 भाग पानी लेप या घोल बनावे के लाने प्रयोग करें। जे लेप से बीमारियों से भी पौधों की रक्षा होत है।
1: कृषि सामिकी में अभी आप सुन रहे थे ग्रीष्म काल में फलदार पौधों की सुरक्षा विषय पर जानकारी। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है हमारे आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आप तक पहुंचाने का।

आज रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आज सुबह 9:30 पर सुनिएगा सिंधियत जी सुरहान कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे से।

सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में आज खास होगा मधु पाठक का कविता पाठ। सुबह 9:00 लोक रसधार कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामकिशोर सूर्यवंशी और राजा राम विश्वकर्मा। सुबह 9:20 पर सुनिएगा सारंगा।

तीस मिनट पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा आज रघुवर दास अहिरवार के गाए लोकगीत। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी सुमिति माहेश्वरी। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज सुनिएगा भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा बकरी आहार प्रबंधन। इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अंकुर खरे।

आज रात 9:30 पर सुनिएगा नाटक सलमा आपा। इस नाटक के मूल लेखक हैं भीष्म साहनी और प्रस्तुतकर्ता होंगे कमल दत्त।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 7 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 7:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

0: सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीयगृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ शतविधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरललक्षद्वीपदक्षिणकर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड् प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

0: डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ

0: लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुड्डेबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
1: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं

नियोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुणा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव के तैयारियों की समीक्षा की।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम का।

गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुड मॉर्निंग श्रोताओं, जिंदगी एक चाह है, हर चाह की एक राह है, हर राह का एक उद्देश्य है, हर उद्देश्य की एक मंजिल है, हर मंजिल के पीछे छिपी कामयाबी है, और हर कामयाबी के पीछे छिपी होती है बस मेहनत। इसलिए एक ऐसा लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए जिसे पाने के लिए हम हर सुबह खुद को जगाएं और खुद से ये कह सकें।

हर दिन कुछ कहता है, हमें कुछ नया सिखाता है। हर सुबह एक नया अध्याय लेकर आती है, नया पाठ, नई सीख लेकर आती है। कुछ नया एहसास करते हैं हम, या फिर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, या फिर हम पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, है ना? बिल्कुल सही। कुल मिलाकर हर दिन हमसे यही कहता है कि जीवन के प्रति हम जागरूक हों और हर पल की अहमियत को समझें, क्योंकि समय तेज़ी से चल रहा है। इसलिए खुद को जगाना है और नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित भी करना है।

दोस्तों, आज रविवार है। रविवार यानी छुट्टी का दिन है। बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छा लगता है छुट्टी का दिन। किसी के लिए आराम का दिन है तो किसी के लिए सबके साथ रहने का दिन, तो किसी के लिए है मस्ती का दिन। और शायद हम जीवन का सही आनंद लेते हैं, या हम फिर ये कह सकते हैं कि हम जीवन को जीते ही हैं छुट्टी के दिन। ये बात तो सबके जीवन का अपना अपना निर्धारण है कि हम कैसे जीते हैं। जैसे ही कोई तीज त्यौहार, उत्सव या फिर छुट्टी का दिन आता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही ये दिन बीतता है तो लगता है हमारी खुशी और हमारा आनंद भी चला गया है। गौर कीजिएगा इस बात पर, जब किसी दिन उठते ही हमें ये पता होता है कि आज कुछ अलग है, खास है, अनूठा है, तो हम उत्साह और जोश से भर जाते हैं। और जब सुबह उठने पर हमें ये पता चलता है कि आज फिर से वही चक्की चलेगी, तो मन की स्थिति कैसी होती है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए जीवन के हर दिन में हर सुबह के साथ कुछ नया करने का मन बनाएंगे, तभी हम जीवन का हर दिन उत्सव की तरह जी पाएंगे।

0: आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओ, इस समय आप आनंद ले रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं कविता पाठ। काव्यकार हैं मधु पाठक।
1: प्रस्तुत है मेरी कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है संसार चलाती है माँ। घर परिवार ही नहीं, संसार चलाती है माँ, और श्रेय ले जाते हैं भगवान। पालनहार कहलाते हैं भगवान, पर लालन पालन तो करती है माँ। संसार चलाती है माँ और श्रेय ले जाते हैं भगवान। करुणा के सागर करुण पुकार सुने ना सुने, करुणा के सागर करुण पुकार सुने ना सुने, उसी क्षण दौड़कर चली आती है माँ। संसार चलाती है माँ और श्रेय ले जाते हैं भगवान। दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हैं, दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हैं, बूंद बूंद को तरसाते हैं, तब अपनी ममता का सागर लुटाती है माँ। संसार चलाती है माँ और श्रेय ले जाते हैं भगवान। सुख करता दुख हरता को कितना भी रट लो, सुख करता दुख हरता को कितना भी रट लो, पर सुख दुख में साथ निभाती है माँ। मरने के बाद भले ही साथ निभाते होंगे भगवान, पर जीते जी साथ निभाती है माँ। संसार चलाती है माँ और श्रेय ले जाते हैं भगवान। चलो श्रेय ले लिया तो ले लिया, भगवान बन गए तो बन गए, पर क्या बन पाओगे एक माँ, पर क्या बन पाओगे एक माँ। संसार चलाती है माँ और श्रेय ले जाते हैं भगवान। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ थी मेरी। जादूगर नहीं थी, जादूगर नहीं थी, माँ थी मेरी, फिर भी उसकी हर बात में जादू था। जब पकाती थी भोजन पहले करती थी प्रभु को अर्पण, अग्निदेव गोमाता के बाद फिर मुझे मिलता था भोजन। उसकी रसोई में जादू था, उसकी खाने में जादू था। जादूगर नहीं थी माँ थी मेरी, उसकी हर बात में जादू था, उसकी हर बात में जादू था। मना लेती थी पल भर में चाहे कितना भी हो गुस्सा, सुलझा देती थी हर मामला चाहे कितना भी हो उलझा। उसकी बातों में जादू था, उसके अंदाज में जादू था। जादूगर नहीं थी माँ थी मेरी, उसकी हर बात में जादू था, उसकी हर बात में जादू था। थके पैर भी थिरक उठते थे उसकी ढोलक की थाप पर, थके पैर भी थिरक उठते थे उसकी ढोलक की थाप पर। बदल जाते थे थाप उसके गीतों की तर्ज पर। उसकी हाथों में जादू था, उसकी उंगलियों में जादू था। जादूगर नहीं थी माँ थी मेरी, उसकी हर बात में जादू था, उसकी हर बात में जादू था। मोह लेते थे मन उसके भजन, मोह लेते थे मन उसके भजन, जब गाती थी वो होकर मगन। उसकी आवाज में जादू था, उसके सुर में जादू था। जादूगर नहीं थी माँ थी मेरी, उसकी हर बात में जादू था, उसकी हर बात में जादू था। आँखों में छुपाकर काजल की डिबिया को, बुला लेती थी वापिस रूठी हुई निंदिया को। उसकी थपकी में जादू था, उसकी लोरी में जादू था। जादूगर नहीं थी माँ थी मेरी, उसकी हर बात में जादू था, उसकी हर बात में जादू था। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पहली गुरु माँ। माँ तुम ही हो मेरी पहली गुरु, माँ तुम ही हो मेरी पहली गुरु, तुम्हारे गर्भ से ही हो गई थी मेरी शिक्षा शुरू। माँ तुम ही हो मेरी पहली गुरु। माँ नहीं था अभिमन्यु कोई अनोखा बालक, हर बच्चा सीखता है माँ के गर्भ से कुछ ना कुछ। मैंने भी सीखा है बहुत कुछ, और बाकी का रहा कसर तुमने कर दिया पूरा मेरे इस संसार में आते ही। जब सब कुछ था मेरे समझ के परे, तब समझाया मुझे इशारे से, महान हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम। तुम मिटाकर खुद को मुझे सिखाती रही, मेरे नींव के पत्थर को पारस बनाती रही।

0: माँ, तुमने मुझे जीना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया, दुख में भी मुस्कुराना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया, तौर तरीके आचार विचार सिखाया, आदर सत्कार और संस्कार सिखाया। माँ, मुझ में कोई कमी रह गई हो तो अभी सिखा देना, नहीं होती सीखने की उम्र कोई, ताउम्र तुम सिखाती रहना। माँ, तुम पहली गुरु हो मेरी, बताओ क्या दूँ मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा। कर भी दूँ अगर सर्वस्व नेछावर तुम पर, तो भी तो कम है ये गुरु दक्षिणा, तो भी तो कम है ये गुरु दक्षिणा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ तू भगवान है। माँ नींव है तू मेरे अस्तित्व का, माँ नींव है तू मेरे अस्तित्व का, मेरे उम्मीदों का आसमान है, माँ तू भगवान है। माँ तू गीता के श्लोकों में, रामायण के दोहा छंदों में, उपनिषदों में, चारों वेदों में, तू ज्ञान की खान है, माँ तू भगवान है, माँ तू भगवान है। माँ तू त्याग की प्रतिमूर्ति है, स्व सुख की आहुति है, निश्चल भक्ति है, शक्ति है, दया ममता से है निर्मित, तेरे मंदिर का हर सोपान है, माँ तू भगवान है, माँ तू भगवान है। माँ कितना छोटा सा शब्द है, माँ कितना छोटा सा शब्द है, पर कितना विशाल कितना भव्य है, सागर से गहरा मन है तो आसमान से ऊंचा कद है। माँ तुझ में सिमटा सारा जहान है, माँ तू भगवान है, माँ तू भगवान है। सारे मंदिर और शिवाला, सारे तीर्थ चारों धाम, सब में स्थापित पाषाण मूर्ति, सब में स्थापित पाषाण मूर्ति, पर माँ तू तो साक्षात भगवान है, माँ तू तो साक्षात भगवान है, माँ तू भगवान है, माँ तू भगवान है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मदर्स डे। आज सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं, आज सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं, माँ के साथ फोटो खिंचवा कर जमाने को दिखा रहे हैं। जरा देखो तो सही उस माँ की ओर, जरा देखो तो सही उस माँ की ओर, कितने प्यार से निहार रही है तुम्हारी ओर। पास बैठो पूछो उसे, पास बैठो पूछो उसे, माँ क्या चाहिए तुम्हें, माँ क्या चाहिए तुम्हें। माँ कुछ बोले ना बोले, उसे खुशी मिल जाएगी, कितनी फिक्र है मेरे बेटे को मेरी, यही सोचकर निहाल हो जाएगी। पूछ कर तो देखो, माँ खुशी से पागल हो जाएगी। माँ तो वैसे भी पागल सी होती है, माँ तो वैसे भी पागल ही होती है, अपने लिए ना जीती है ना मरती है, अपनी सारी खुशियाँ बच्चों पर लुटाती है, अपना सारा जीवन बच्चों पर न्योछावर कर देती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ के बलिदानों का कोई तोल नहीं, मत करना कभी दिखावा, ना ही करना माँ से छल, बनना मिलेगा तुम्हें कर्मों का फल। माँ भले ही तुम्हें कर दे माफ, माँ भले ही तुम्हें कर दे माफ, पर भगवान तुम्हें कभी ना करेगा माफ। तुम कितना भी कर लो पूजा पाठ दान धर्म, कुछ काम ना आएगा, अगर दुखाया माँ का दिल और रुलाया उसे तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर करना है तो करो माँ की सच्ची भक्ति, अगर करना है तो करो माँ की सच्ची भक्ति, तभी मिलेंगे तुम्हें भगवान और मिलेगी मुक्ति, और मिलेगी मुक्ति।
1: गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से, और इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मधु पाठक का कविता पाठ। और श्रोताओं, जैसा कि आप सब

भी जानते हैं आज संडे है और आज का संडे खास है क्योंकि आज का दिन माँ के पास है। जी हाँ, आज मातृ दिवस है यानी मदर्स डे है। तो इस बारे में हम और चर्चा करेंगे, इससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, संवेदनाएं हो, सहनशीलता हो, प्रेम, संयम और जीवन जीने की कला हम माँ से ही सीखते हैं। माँ हमारी पहली गुरु होती है। बचपन माँ की ममता की छाँव में पलता है और हर उम्र में माँ का आसपास होना हमारे मन को मंदिर समान शांति देता है। माँ की ममता शब्दों की सीमा से परे होती है। माँ की ममता को ना किसी किताब से बांधा जा सकता है और ना ही किसी कविता कहानी में समेटा जा सकता है। निःशब्द प्रेम की सबसे पवित्र परिभाषा माँ ही होती है।

किसी ने सच ही कहा है, हंसती हुई माँ और मुस्कुराते हुए पिता से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा इस दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसे पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। शायद माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत होता है। तो आज मातृ दिवस पर अपनी माँ, धरती माँ, देवी माँ और संसार जगत के समस्त प्राणियों की माँ को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।

0: आज का गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम बस यहीं तक, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अब समाचार प्रकाश
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने

0: स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत

0: 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया अमर प्रेम फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे आर डी बर्मन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में, रविंद्र जैन का लिखा हुआ। संगीत भी रविंद्र जैन का ही है। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत। संगीत बनाया विशाल खुराना ने, गायिका है सुनिधि चौहान और फिल्म का नाम है नीरजा।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में ये था अम्बा फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल का गाया हुआ, संगीतबद्ध किया अजय अतुल ने, फिल्म का नाम है ताना जी।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में। पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।

0: माँ पर आधारित गीत आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे वहां बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के भैरुंदा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बना करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और IPL क्रिकेट में कल जयपुर में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रन पर सिमट गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। समय है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार का। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राम किशोर सूर्यवंशी के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक रसधार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राजा राम विश्वकर्मा के गाए लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राम किशोर सूर्यवंशी और राजाराम विश्वकर्मा के गाए लोकगीत।

से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

0: सिंधियत जे सुरहाण में अॼु क़बूलींदा हर्षा जे सिख भरी नमस्ते। जय झूलेलाल साथियो, अॼु मई महीने जो ॿियों आर्तवार। हिन दुनिया में ईश्वर जी सभिनीनि खां वधीक प्यारी ऐं सुंदर सुहिणी रचना, जंहिंजे निस्वार्थ प्रेम ऐं क़ुर्बानीअ लाइ हर शख़्स हुन खे ममता जी मूरत सॾींदो आहे, अहिड़ी माउ यानी माता जे सन्मान ऐं धन्यवाद ॾियण जो ई ख़ासि ॾींहुं आहे। माउ जी ममता जे अनमोल खज़ाने में पंहिंजे ॿारनि लाइ प्यार जा जेके मणिया निकिरंदा आहिनि, उन्हनि जी क़ीमत कंहिं भेटा, सूखड़ी या गिफ्ट जे रूप में चुकाए सघबी कोन्हे। पर हुन अनमोल प्यार जे लाइ जॾहिं लफ़्ज़ घटि थी वञनि, त पंहिंजी भावनाउनि खे गिफ्ट या सूखड़ीअ जो रूप ॾेई माउ जो सन्मान करण जो इहो ॾींहुं आहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सदीअ जे शुरूआति खां वठी इहो ॾींहुं मल्हाइणु अन्ना जर्विस जी पहल हुई। हुन वेस्ट वर्जीनिया जे ग्राफ्टन शहर में एंड्रियस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पहिरियों भेरो माता जी पूॼा ऐं उत्सव जी तयारी कई। तॾहिं खां पोइ हर साल मईअ जो ॿियों आर्तवार मातृ दिवस यानी मदर्स डे जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। ॿी ॻाल्हि कयूं त परिवार। परिवार समाज जी हिकु अहिड़ी इकाई आहे जेका प्रेम, सुरक्षा ऐं संस्कार ॾींदी आहे। परिवार में अलॻि अलॻि माण्हू जुदा जुदा ज़िमेदारियुनि में ॿधल हूंदा आहिनि। कमु, पढ़ाई, नौकरी, सामाजिक जवाबदारियूं, इन्हनि सभिनीनि कारणनि सां परिवार सां गॾु वेही रिश्तनि खे मज़बूत करणु ऐं आधुनिक चुनौतियुनि ते चर्चा करण जो वक़्तु घटि ई बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन जी सामाजिक, आर्थिक ऐं सांस्कृतिक भूमिका लाइ सुजाॻी आणण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारां सन 1993 में 15 मई जो ॾींहुं परिवार ॾींहं जे रूप में मल्हाइण मुक़ररु कयो वियो। त विश्व परिवार ॾींहुं ऐं मदर्स डे जूं अव्हां सभिनीनि खे खोड़ खोड़ वाधायूं, शुभकामनाऊं ऐं परिवार में मस्ती, खिल, रौनक त ज़रूरु हूंदी ई आहे। त इन ई मौक़े ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्तीअ भरो गीत। गोवर्धन भारतीअ जी रचना, सी अर्जुन जो संगीत, भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जी आवाज़।
1: ऐं अमा,
2: चओ पुट, मां सदके वञा आहीं।
1: अमा, मूंखे शादी कराइण खां अॻु कुंवार बाबति का पुछा गछा बि कए।
2: ॾिस ॾिस पुट, मूंखे ॾो न ॾे। अरे छोकिरी त तूं पाणी पसंदि करे आयो आहे न।
1: हा, पसंदि बि मूं कई, शादी बि मूं कई, ऐं शादीअ सां गॾु जेके बंदि पेतीअ में 20 गिन्नियूं ऐं 25 तोला सोन, 16 साड़ियूं ऐं 50,000 रोकड़ वठी आयसि।
2: मारिया आस्ते ॻाल्हाए त किथे इनकम टैक्स वारा न ॿुधनि। अरे अॻे ई असां पतरा कढाया हुआ त ॾेती लेतीअ में असां पाई बि न वरिती हुईसीं।
1: आहा, पाई बि कान वरिती हुईसीं, उन हूंदे बि बंदि पेती वठी तो पाण वटि रखी। साड़ियूं पाए तूं, ज़ेवर पाए तूं, रोकड़ रखे सॼी पाण वटि। अमा, मूं सां त वेदन कई थी।
2: लाल, तोसां कहिड़ी वेदन थी आहे?
1: अमा ॿुधाए।
2: हा हा, हिकदमि चई ॾे,

सदियो इन गीत खां पोइ अॼु असां तव्हांखे वठी था हलूं वक़्त जी हुननि घिटियुनि में अहिड़े सफ़र ते जिते ॻाल्हि थींदी फ़क़ति भारतीय प्रसारण जी पीढ़ जी आधारशिला जी यानी आकाशवाणीअ जी। साथियो असां तव्हां सां रूबरू थियूं था त इहो फ़क़ति हिकु रेडियो स्टेशन कोन्हे पर लखे भारतीय माण्हुनि जी यादूं समाचार ख़बरूं ऐं मनोरंजन जो साथी आहे जंहिंखे असां आकाशवाणी नाले सां सुञाणूं था। उन जी दास्तान 1920 में शुरू थी हुई जॾहिं बिजली बि हर घर कोन पहुती हुई ऐं तकनीकी विकास बि अॼु जेतिरो कोन हो। अहिड़े समय में रेडियो यानी ट्रांस

सिस्टर्स पंहिंजो जादू ॾेखारियो। सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब पंहिंजो पहिरियों प्रसारण कयो हो। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीअ बॉम्बे ऐं कलकत्ते में ॿ स्टेशन शुरू कया। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार हिन जी ज़रूरत ऐं महत्व सम्झियो ऐं पोइ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS जी शुरूआति कई वई। इहो हिकु प्रैक्टिकल क़दम सन 1932 जी 8 जून ते मक़म थियो ऐं उहो एतिहासिक ॾींहुं आयो जो ISBS जो नालो मटे ऑल इंडिया रेडियो यानि AIR रखियो वियो। ॿिए विश्व युद्ध जे वक़्तु इन जो महत्व अञा वधी वियो ऐं 1956 में ऑल इंडिया रेडियो खे आकाशवाणी नालो ॾिनो वियो। ईंदड़ 8 जून 2026 ते आकाशवाणी पंहिंजी प्रसारण सेवा जा 90 साल पूरा करे रही आहे। अव्हां सभिनीनि प्यारे रेडियो श्रोताउनि जा असां लख थो रहता आहियूं जो तव्हां जे प्यार, पसंदगी ऐं विश्वास आकाशवाणी जी प्रसारण सेवा खे इन मुक़ाम ते पहुचायो आहे। ऐं हिन ॼाण खां पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं था हीअ लोली, सी अर्जुन जो संगीत, कृष्ण राहीअ जी लिखियलु, भगवंती नावाणीअ जी आवाज़ में EMI प्रोडक्शन जी पेशकशि।

0: भगवंती नावणीअ जी आवाज़ में कृष्ण रहीअ जी लिखियलु इहा लोली तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ऐं हींअर पेश करे रहिया आहियूं असां संत साईं दादा चेलाराम जे जीवन ऐं उन्हनि जा महान वीचारनि ते हिकु ख़ासि वार्ता पेश कंदड़ आहिनि श्री लोकचंद जनयाणी जी। ही महान संत दादा चेलाराम साहिबु उन्हनि जो जनम 3 मई ते थियो हुओ। गुरबाणीअ जो प्रचार प्रसार माण्हुनि में सेवा भाव जॻाइण वारा ही संत उत्तम वीचारनि जा धणी हुआ। अचो उन्हनि जे जीवन यात्रा ऐं वीचारनि खे वधीक विस्तार सां ॿुधूं था श्री लोकचंद जनयाणी जी आवाज़ में।
1: दादा चेलाराम जन जो जनम 3 मई 1904 में हिकु सिंधी परिवार में हैदराबाद सिंध में थियो। संदन पिता जो नालो डॉक्टर टेकचंद राचूमल मनखाणी ऐं माता जो नालो चेतबाई हुओ। संदन जे नंढी उमिरि में ई माता पिता ऐं भेण हिन फ़ानी दुनिया मां चालाणो कयो, जंहिं करे संदन बालपन अकेलेपन में ऐं चिंतनशील थी गुज़रियो। उन्हनि कानून जी डिग्री हासिलु कई ऐं वकालत सां पंहिंजो जीवन जी शुरूआति कई, पर संदन इन प्रोफेशन में मन न लॻो। पोइ उन्हनि सिविल सेवा में पंहिंजो जीवन लॻायो, जिते उन्हनि खे धार्मिक ग्रंथनि खे पढ़ण ऐं सम्झण लाइ बि टाइम मिलियो। सिखनि जे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संदन जे दिलि ते वॾो असरु विधो। गुरुबाणीअ में उन्हनि खे रस अचणु लॻो ऐं प्रभुअ तरफ़ वधणु लॻा। सभ खां पहिरीं उन्हनि कराचीअ जे गुरुद्वारे में कीर्तन करणु शुरू कयो। उन्हनि ॿारनि खे बि सेखारणु पढ़ाइण जो कमु चालू कयो। संदन कीर्तन करणु सभिनी खे वणणु लॻो। धीरे धीरे उन्हनि जे कीर्तन खे ॿुधण लाइ चङा माण्हू गॾु थियणु लॻा। संदन खे ननकाणा साहिब ऐं अमृतसर गुरुद्वारे मां बि वक़्तु बे वक़्तु कीर्तन लाइ नींढ मिलणु लॻी। उन्हनि घणनि ई गुरुद्वारनि में कीर्तन कयो, जंहिं सां संदन खे दादा जी उपाधी मिली। इहा उपाधी पवित्र पुरुषनि या बुज़ुर्गनि खे ॾिनी वेंदी आहे। उहे हिकु मशहूरु सहजदारी सिख हुआ, जिन गुरबाणीअ जी अलख हर हंधि जॻाई। सिर्फ़ 24 सालनि जी उमिरि में ई 1930 में उन्हनि गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद अरबी सिंधीअ में कयो।

0: हिन खां पहिरीं कॾहिं बि सिंधीअ में अनुवाद कोन कयो वियो हो। 1938 में कराचीअ में दादा चेलाराम आश्रम जी स्थापना कई वई, जिते ॿारनि खे गुरुमुखी पढ़णु सेखारी वेंदी हुई ऐं साथ में ॿिए धर्म ग्रंथ ऐं संस्कारनि जी नींव बि विधी वेंदी हुई। 1947 में देश जे विरहाङे खां पोइ दादा पूरे परिवार सां गॾु दिल्लीअ में अची पंहिंजो घरु ठाहियो हो ऐं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करे पंहिंजे परिवार खे पालणु लॻा। 1958 में दादा जन दिल्लीअ में हिकु धार्मिक केंद्र निज थाउ जी स्थापना कई, जंहिंजो मतिलबु आहे पंहिंजो स्थान, जिते गुरु ग्रंथ साहिब खां सवाइ ॿिए बि घणेई धार्मिक ग्रंथ जीअं त गीता, बाइबल, क़ुरान बि मौजूदु हुआ, जिते बिना जात भेदभाव जे कोई बि अची अध्ययन करे सघंदो हो। अॼु बि घणेई माण्हू इन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दिल्लीअ में ई दादा जन निर्गुणा बालक सत्संग मंडल जी स्थापना कई, पोइ इन जूं शाखाऊं मुंबई, पुणे ऐं सोलन हिमाचल प्रदेश जे भरिसां सपरून में बि स्थापित कयूं वयूं। सपरून 15 अप्रैल खां 15 सितंबर ताईं अचण वारनि लाइ खुलियलु हूंदो आहे, जिते हिन वक़्तु संदन सुपुत्र हरीश चेलाराम ट्रस्टी जे रूप में शेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं इन्हनि सभिनी सेंटरनि ते अॼु बि ज्ञान जी नदियूं वही रहियूं आहिनि ऐं घणेई जिज्ञासु वञी करे उते पंहिंजे पाण खे विकसित करण लाइ फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दादा ज्ञान जा भंडार हुआ, स्वभाव सां संयमी, धार्मिक ऐं निस्वार्थ भावना सां भरपूर, पाण खे हमेशह प्रभुअ जो निमाणो सेवक सम्झंदा हुआ। दादा जन जे वीचारनि सां हर इंसान खे समान अधिकार मिलणु खपनि, जीअं त जीवन, स्वतंत्रता ऐं सुख जी खोज शामिल आहे। दादा जन चवंदा हुआ त असां सभई ईश्वर जा सेवक कयूं, सभिनी सां प्रेम कयूं। हू हर जन जन जे शेवा लाइ पंहिंजो पाण खे शामिलु करे छॾींदा हुआ। हर माण्हूअ जे शेवा लाइ हू हमेशह अॻियां वधी करे शेवा कंदा हुआ। दादा गुरबाणी ज्ञान सां रची वसी विया हुआ, उन्हनि जे रोम रोम में गुरबाणी वसियल हुई। दादा जन इहो ई ज्ञान पंहिंजे परिवार खे बि ॾिनो। संदन 8 ॿार हुआ, जेके सभई गुरबाणीअ जो कीर्तन कंदा हुआ ऐं उन्हनि सभिनी जा ॿार अॼु बि गुरबाणी कीर्तन कंदा आहिनि ऐं गुरबाणी कीर्तन कॾहिं पैसे लाइ कान कंदा आहिनि। दादा जन जी आज्ञा हूंदी हुई त गुरबाणी कीर्तन गुरु साहिब लाइ करिणो आहे ऐं गुरु साहिब खे ई ॿुधाइणो आहे। दादा चेलाराम ऐं उन्हनि जे पूरे परिवार, ख़ासि तौर सां दादा लक्ष्मण दास चेलाराम साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद 6 भाषाउनि में कयो ऐं सुखमनी साहिब जो अनुवाद 15 भाषाउनि में कयो। संदन परिवार जन जन में गुरुबाणीअ जी अलख जॻाए रखी आहे। 55 वर्ह्यनि जी उमिरि में दादा नौकरीअ मां रिटायर थी आख़िरी 5 साल सपरून हिमाचल प्रदेश में बिताया। दादा साल में 7 महीना ॿाहिरि कीर्तन लाइ वेंदा हुआ ऐं 5 महीना आश्रम में रहंदा हुआ। दादा पूरे देश में ॿाहिरनि माण्हुनि खे गुरबाणीअ जो ज्ञान भरपूर ॾिनो। गुरबाणीअ सार आहे प्रभु की शरण सगल भैला थे। जेको बि प्रभु जी शरण वठे थो उन जा सभु दुख दूर थी था वञनि, सभु कष्ट दूर था थी वञनि। ऐं चवंदा आहिनि प्रभु ते भूलिया व्यापन सभु रोग। अगरि असां प्रभुअ खे भुलायो आहे त सभु तरह जा रोग अची असांखे वठ कंदा आहिनि। त इहो गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी साहिब जो सार आहे ऐं इहो ई मैसेज दादा जन हमेशह सभिनी इंसाननि खे ॾींदो। 1964 में अंतिम 5 कीर्तन यात्रा जे दौरान कीर्तन कंदे दादा खे आगरे में दिलि जो दौरो पियो। संदन सिख शेवक दादा खे वठी दिल्ली आया। दिल्लीअ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐं निज थाउ जे विच में दादा जीवन जा आख़िरी श्वास वरिता। दादा जन कॾहिं बि कीर्तन पैसे लाइ, पुरस्कार लाइ, सम्मान लाइ, प्रचार लाइ या कंहिं कामना सां कोन कयो, सिर्फ़ु प्रभुअ लाइ कयो, प्रभुअ खे समर्पित कयो। उन्हनि पंहिंजो पूरो जीवन सेवा ऐं सिमरन में लॻाए पंहिंजो जीवन सफल करो विया ऐं असां सभिनी लाइ राह रोशन करे विया। मां आकाशवाणी जे बानीकारनि खे धन्यवाद ॾींदुमि त अहिड़नि संतनि जे बारे में मूंखे उन्हनि जा वीचार रखण जो मौक़ो ॾिनो वियो ऐं इन माध्यम सां सभिनी माण्हुनि ते इहे ॻाल्हियूं पहुचंदियूं। धन्यवाद।
1: ऐं हिन खां पोइ अचो त वरी हिकु गीत ॿुधूं था, सरला ऐं बुलो सीराणीअ जी आवाज़ में फिल्म अबाणा, प्रभु वफ़ा जो गीत।

त साथियो अॼु जो कार्यक्रम इते ई पूरो करण जी ॾींदा पंहिंजे रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त। जल्दी तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए रूप नए गाना नए ख़बरुनि सां गॾु। वरी गॾिजबो, सभु जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहाण, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे उमरिया जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिने गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्यप्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकल्पकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी। या
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:05 हो रहे हैं। समय है वंदे मातरम कार्यक्रम का।

श्रोताओं, वंदे मातरम गीत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भारत की भूमि के प्रति प्रेम, उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग और उसके लिए सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ये वंदे मातरम गीत भारतीय जनमानस में इतनी गहराई से रचा बसा है कि एक साधारण साहित्यिक रचना की सीमाओं से ऊपर उठकर वो राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज जब हम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी का स्मरण करते हैं, तब हम केवल एक गीत का अभिनंदन नहीं करते, हम उस राष्ट्रीय चेतना को नमन करते हैं जिसने गुलामी में स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था, संघर्ष में विजय का विश्वास देखा और बलिदान में अमरत्व प्राप्त किया। आज नई पीढ़ी यदि वंदे मातरम के मूल भाव को समझे तो उसमें मातृभूमि के प्रति श्रद्धा के साथ साथ राष्ट्रहित में कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को वंदे मातरम का केवल पाठ न कराएं, बल्कि बच्चों और युवाओं को उसका भाव भी समझाएं कि मातृभूमि के प्रति प्रेम का अर्थ है सत्यनिष्ठा, सेवा, समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रहित में कर्म। आज के समय में मातृभूमि की वंदना का अर्थ है अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता, समाज के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर भारत की गरिमा को विश्व में ऊंचा उठाना। वंदे मातरम गीत भय को साहस में, निराशा को आशा में और दासता को प्रतिरोध में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। वंदे मातरम गीत भारत की स्वाधीनता संघर्ष का अमर स्वर है, भारतीय संस्कृति का गौरव चिन्ह है, राष्ट्रीय चेतना का दीप स्तंभ है और मातृभूमि के प्रति अनंत श्रद्धा का महागान है।

هر صبح و شام. अग्नि पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम खलते सुब

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा। उन्होंने ट्रिनिडाड टोबैगो के पेनाल में एक स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक केंद्र देश और व्यापक कैरिकॉम क्षेत्र के लिए उपहार है। उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर में दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और भारत तथा ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के साथ मतभेद सामने आने के बाद भी यूरोप नाटो गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करना चाहता है। स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिटसन के साथ श्री मर्ट्स ने भविष्य में इस गठबंधन को सक्रिय रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने गठबंधन के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत किया है। श्री मर्ट्स ने कहा कि यूरोप और अमरीका के बीच मतभेद अब भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही रणनीतिक उद्देश्य है, ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के यूरोपीय सदस्यों के बीच तनाव ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। होर्मुज, जलडमरू, मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद यह बयान आया है। 28 फरवरी से ईरान के होर्मुज, जलडमरू, मध्य पर नियंत्रण के लिए इसराइल और अमरीका से संबंधित जहाजों की आवाजाही इस जलमार्ग से रुकी हुई है। अमरीका ने भी इस क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ब्रिटेन होर्मुज, जलडमरू, मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत HMS ड्रैगन तैनात कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात किया था। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज, जलडमरू, मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले खराब रूस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए उनके पसंदीदा नेता हैं जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर। श्री पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच रूस और वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमण की आशंका वाले MV होंडियस क्रूज पर सवार सभी लोगों को 42 दिन तक निगरानी में रखने को कहा है। संगठन के वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डॉ. वैन किरखोव ने कहा कि वर्तमान में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 42 दिन के दौरान जहाज से उतरने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और कैनरी द्वीप समूह के निवासियों के लिए जोखिम कम है, जहां MV होंडुरस क्रूज आज पहुंच रहा है। इससे पहले MV होंडुरस क्रूज पर हंता वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी, जो अर्जेंटीना से पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले से तय न्यूनतम वेतन में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन ने कहा है कि कम वेतन पर विदेशी कर्मी उपलब्ध न होने से अमेरिकी नागरिकों के वेतन में कटौती पर रोक लगेगी।
1: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता

0: विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की भारतीय टीम ने मेजबान चीन को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ में हराया। भारत ने पहला सेट जीता लेकिन चीन ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर लिया। निर्धारित 4 सेट के बाद स्कोर बराबर रहने के कारण शूट ऑफ कराया गया। भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण त्रिनिदाद में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों के 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the World News. The headlines. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar inaugurates agro-processing facility in South Trinidad, says it will strengthen SMEs and farming sector under India's Seeds Initiative. WHO advises 42-day monitoring for all cruise ship passengers affected by hantavirus outbreak, treating them as high-risk contacts. US proposes 30% hike in minimum wages for H-1B visa workers. And in archery, India stunned China to clinch recurve team gold at Shanghai World Cup. Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a run time of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. We have a report.
4: The successful test of the actively cooled full-scale scramjet combustor positions India at the forefront of the advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. The ministry said that the combustor uses an indigenously developed liquid hydrocarbon fuel, advanced thermal barrier coating, and modern manufacturing technologies. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, industry partners, and academia, and described the achievement as a solid foundation for the nation's.
5: मीडिया वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ये समय है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा का। सारंगा की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए इस गीत के साथ।

धर्म करम फिल्म का ये गीत था मुकेश की आवाज़ में। मजरूह का लिखा ये गीत था, राहुल देव बर्मन का संगीत था। पसंद हमारे इन श्रोताओं की थी कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से पत्र है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का, शेरपुर कला गाजीपुर से ही खत है अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय का, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से सुनना चाहते थे इस गीत को हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक, देवरी भाटापारा से थे गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, जतुका किशनपुर से पत्र आया आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज का, सिराजपुर गणेशपुर से हैं हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। इसी गीत को सुना चाहा था नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर ने। फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा में अब सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद के गीत को। श्रोताओं के नाम हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, सूरज ठाकुर, रियांश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और तारनी ठाकुर। बेडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, गायत्री ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। पुणे से लिखने वाले पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे। छत्रपति संभाजी नगर से पत्र आया है राशि राजेश, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राजेश साबले पाटिल का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश के मालवा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, पायल वर्मा, ज्योति, अतुल, शोभा वर्मा, राहुल, माया वर्मा, बलवंत कुमार वर्मा और राजू बाई। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से लिखने वाले हैं पवन कुमार सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन, प्रभा देवी सेन और खुशी रौनक सेन। आप सभी की पसंद पर सुनिए हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत। गायक कलाकार हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू। देव के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया राम लक्ष्मण ने।

बातों बातों में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। योगेश के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। इसी गीत को सुनना चाहा था बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पत्र था दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। नेपाल पैलेस से सागर से इस गीत को सुना चाहा था तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। इसी गीत के लिए एक और खत था ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां का, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये खत है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। बर्गीनगर जबलपुर से है रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे, शिवम शुभांग और सृष्टि गद्रे। गौतम नगर जिला नांदेड़ से पत्र मिला है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले का। इसी गीत को सुनना चाहा है सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिमा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से लिखने वाले हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वली डोम और डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से पत्र है उल्लाह आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, वसीम आसमा बेलदार का। इस गीत के लिए अनुरोध किया है हमसे गड़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी और कुंदन मंडल ने। एक और खत है इसी गीत के लिए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं सोनू निगम का गाया निदा फाजली का लिखा गीत, माफ कीजिए, गीतकार है निदा फाजली और संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव। फिल्म का नाम है बस इतना सा ख्वाब है।

सारंगा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से, और अगला गीत हम इन श्रोताओं की पसंद पर आप तक पहुंचाने वाले हैं। श्रोताओं के नाम हैं प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले, जयश्री खंडाले, राजेश कुमार खंडाले और अंजलि खंडाले। कुंदानगर खरगोन मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं ध्रुवा सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी सोनवड़े, प्रियांश सोनवड़े, आशीष सोनवड़े, पूनम सोनवड़े, कृष्णा सोनवड़े और शुभम सोनवड़े। जम्भारून से पत्र आया है दुर्गा दास जोशी, गंगाधर जोशी, संजय जोशी, गजानन जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणी हुन और गणेश हारगांवकर का। गांधी बागा कोला से है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर का गाया अमीर कजल बश का लिखा गीत, धुन रविंद्र जैन की है, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा।

सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म का गीत। पंकज और साधना सरगम की आवाज़ है। विजू शाह के संगीतबद्ध किए हुए इस गीत की रचना की इंदीवर ने और पसंद किया इन श्रोताओं ने। आशा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से पत्र हैं अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से लिखने वाले सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर और टुक टुक गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से पत्र आया वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर का। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, पटेल नगर मलोट पंजाब से लिखने वाले डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा से पत्र है लक्ष्मण रैकवार हल्ले, विनीता रैकवार, लल्लू, ऋषि रैकवार, वैशाली और वैष्णवी का। बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से हैं संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर लोधी, सुदामा सेन, लालू और गोलू सोनी, टिंकू, नीलेश लोधी, ललन बर्मन, बिसरता कोल और सुनील ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहा है कुंडम जबलपुर से ममता, सुशीला, अंजना, रंजना, नंदिनी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहरा फिल्म का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें और साथ ही आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपाय कार्यों में बचाव और उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के भैरुंदा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और ताशकंद में एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हमें बताएंगे टेलीफोन नंबर 2660902 के माध्यम से। भोपाल का STD कोड आप जानते हैं 0755। तो बताइए अपनी फरमाइश और आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीतों का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो।
4: हेलो नमस्ते
3: जी। नमस्कार,
4: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
3: जी खान साहब कैसे हैं?
4: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खैरियत में है। बस गर्मी थोड़ी तेज है फिलहाल तो।
3: जी
4: हाँ,
3: अच्छी बात है, खैरियत से होना ही चाहिए। अपन ही यदि ठीक ना हो तो आसपास की चीजें और ज्यादा दिक्कत देने लगती हैं।
4: हाँ सही है।
3: आज के इस कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं, बताइए कौन से गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की।
4: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
3: जी
4: इसका गीत है लता जी की आवाज में। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां।

0: हेलो
1: नमस्कार दीदी,
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: मैं चित्रकूट धाम की बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। कौन दीदी बोल रही हैं?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
1: जी, अमिता जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: झुक झुक गया आसमान तुमसे मिले नजर की मेरी होश उड़ गए।
0: जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप इस गीत की फरमाइश पहले भी कर चुके हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आई।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारे श्रोता भाटापारा दतरिंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद्य कुमार वर्मा। अगले श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से हैं, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: जादूगर को सलाम का 11वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी

0: अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप बीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की है, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ।
0: पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
4: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
2: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
5: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
2: वो
5: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
2: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है।

0: और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है।
1: और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
0: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
2: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
3: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
2: जी आपने मुझे पहचाना?
3: नागा ढील डॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
2: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
3: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
2: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
3: अच्छा,
2: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
3: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
4: ये महाशय कौन हैं? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
3: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
4: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
3: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
4: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
2: भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
3: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
2: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
3: जी धन्यवाद। जी आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
2: हाँ
5: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
3: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया,
3: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए?
2: जी बिल्कुल,
3: वापिस लौटकर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं।
2: जी जरूर।
3: आइए।
2: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
3: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
2: जी बिल्कुल।
3: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
2: भाई साहब मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ,
5: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
2: और वहीं ससुराल भी है।
3: जी
2: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
3: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
2: शुभरात्रि।
3: अरे उमापति जी सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
2: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
3: अच्छा
2: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
3: अरे नहीं नहीं कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
2: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे।
3: जी
2: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
3: अच्छा
2: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
3: अरे
2: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
3: जी
2: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया। तुरंत ही नींद आ गई।
0: अच्छा अच्छा,
2: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
6: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूँ, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
3: इसकी बातों ने तो मुझे हंसमंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
0: अरे अजी सुनती हो?
3: अच्छा उमापति जी, आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
7: क्यों, क्या करोगे?
3: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
7: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
3: वो
7: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
3: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
7: तो कह दो इस समय घर में रुपए नहीं है।
3: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूं, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं, इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते, कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
7: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते। अब ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
1: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
3: सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
8: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
7: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पानी की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी, लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
3: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं, मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
5: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ। दरअसल वो बात यह है कि, और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे, और मुझे इतना

0: काश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास इक्के का किराया भी नहीं है।
1: जी मैं तो आ रहा है कि टका से जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी।
2: बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही, उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। एक हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वही सच था।
1: इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नकद नारायण के दर्शन होते।
3: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
1: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
4: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
1: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
4: जी मुझे स्वीकार है।
1: ठीक है। मुनीम जी।
5: जी।
1: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
3: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
1: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
3: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
4: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
1: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूं और ये भी जानता हूं कि वो यहां रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। हाँ, इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। बिल्कुल खाली।

0: खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
1: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
0: यहां तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने? रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे, मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं?
2: सुनो बेटा, सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
1: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं। मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
2: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे, पहले तुम ये रोना बंद करो। लो, ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ। जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
1: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा। घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
0: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था? कुछ कहकर गया है क्या?
2: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है। मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
0: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, ये अच्छा ही हुआ। चलो, मुझसे ना सही, किसी और से ही सही। मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे, मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गूढ़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो, ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
3: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे, ये तो उमापति ने भेजा है। अरे, सुनती हो? ये देखो, उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे हैं और क्षमा लिखा है।
4: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कड़। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवीके के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। सखियां, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें।

के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए 8 से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है, यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है, इससे ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बने, तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पहचान बन जाए, हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए। एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए। सड़क पर सावधानी घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे, तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है, वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

ममता की छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्से ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हाँ बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती हैं। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम COVID-19 महामारी के आंकड़े देखें तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थीं। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया ताकि वे दूसरों की जान बचा सके। यह केवल एक नौकरी नहीं थी बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं, फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों

में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और भी बढ़ गया है बहनों। हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें

आपसे बात करने जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूँ तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नज़र से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती, माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हर वक्त भगवान से हमारी खुशियाँ ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया? लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, पर अपनी माँ के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, वर्ल्ड ल्यूपस डे, जिसे हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। बहनों, ल्यूपस एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। यह बीमारी त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में इम्यून सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफ़ी लाभकारी होती है। बहुत ज़्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयाँ, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज़्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वज़न कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, 1 चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 ग्लास। सभी चीज़ों को एक कटोरे में अच्छे से मिला लें। अब इसे एक ग्लास में सर्व करें, जिसमें कि आप कुछ बर्फ़ के आइस क्यूब्स डाल दें। ठंडा ठंडा पीने पर काफ़ी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। 1 नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ़ डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं, इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

0: अच्छे बीज की सही मात्रा डालने से उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है।
1: जी जी रावत जी, इसकी लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनसे ये गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
9: दीदी नौकरी लग गई।
10: अरे वाह, बधाई हो।
11: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
9: हाँ दी, नया मोबाइल।
11: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
9: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
11: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
9: पर दीप,
11: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
9: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
11: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: आपकी पहचान, आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाजों में है। फिल्म का नाम RRR।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक

0: ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को MPPSC, बैंकिंग, SSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। IPL क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरपुनिया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और CHO के से सेवाओं की जानकारी ली। और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्वा सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।

0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु मुद्दे முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
5: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया।

0: पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के GST धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। होती है बड़ी प्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ, सुख सारे हमको देकर दुख सारे हर लेती माँ, सदा प्यार हमको देती है, ममता का तो सागर है माँ। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत माँ पर लिखी कविता से क्यों की है। हाँ बच्चों, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो बच्चों, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बहुत उत्साहित ही होंगे। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को यह मदर्स डे मनाया जाता है।

0: बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मीरिया है और मैं क्लास 7 की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मीरिया है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ।
5: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ।
0: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं, तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे अपनी मम्मा को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
1: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
1: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
0: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, तो सुनाइए।
1: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कर मुझे जगाती, जल्दी से तैयार में होता, उसके कारण स्कूल जा पाता, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुलार, मुझ पर गुस्सा जब है आता, 2 में उड़ भी जाता, मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान, माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
0: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
1: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है, बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, दुनिया से है प्यारी माँ,
0: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियां करी है।

0: मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
1: दीदी आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
0: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
1: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
0: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
1: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है। लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है। विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सर्व कीजिए। देखना आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
0: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
1: दीदी बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
1: हाँ दीदी।

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार, लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम, मीठे स्वर में रही पुकार। माँ की ममता माँ का प्यार दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती, करे खिलौनों की भरमार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है, ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई, खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है, अजब गजब मम्मी का रूल, हर बातों को देती तूल, पोछा रोज लगाना है पानी मगर बचाना है, मम्मी का निर्देश कड़ा लगे टॉर्च और बहुत बड़ा, कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत, मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत, आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है, उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाए ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाए या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू, चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरोही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है। ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाँ नोही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फैट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितनी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहां कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है।
2: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी मम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
0: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
2: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी, मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
0: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
2: हाँ दीदी।
3: दीदी, आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: कोई नहीं,
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है, है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। डगर विकास की ये कार्यक्रम रात 8:15 होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे रात 8:30 और रात 9:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.3

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं। जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरुड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति।

0: बन सकते हो?
1: लखपति, अरे क्या कह रहा है?
0: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
1: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
0: है बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
1: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
0: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
1: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है?
0: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
1: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
0: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा? अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
1: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी,

चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है शिव कामी अम्माल, मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माँ जी
1: आओ कंदे स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यो ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ शिंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।

0: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का, कौन है तेरी माँ?
1: कौन? ओहो शिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
0: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
1: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
0: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है, लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन? अंकल शिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
0: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
0: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
0: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
1: शिंगाराम तूने ये
0: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। है? तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
3: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
4: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? मैं

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन?

0: इंस्पेक्टर साहब।
1: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
2: आए आए, इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
1: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
2: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
1: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
3: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसे नहीं चाकू भोका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
1: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
3: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
1: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
4: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
1: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
3: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया।

0: श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
1: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
2: देखो गंध स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
1: क्या कह रही हैं आप?
2: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
1: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
2: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
1: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
2: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
0: भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
2: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
1: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या
0: 1993 फिल्म।

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग।

0: पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डार्क करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सब कुछ। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है। तो इन्होंने मुझे यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे ही अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने
1: अभी। अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: अभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप याजत से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो कहा बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब साहब। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी

0: है।
1: कहानी नहीं है।
0: बाबा
1: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
0: हाँ, दिलीप कुमार की फिल्म लॉन्च हो रही है।
1: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लें, हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे
0: कहानी ढूंढ रहे हैं,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
0: हाँ हाँ
1: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
0: हाँ
1: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज ए राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
0: सिलसिला वाला काम शुरू
1: कर दिया
0: जी।
1: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली,
0: शक्ति
1: नहीं, शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
0: मशाल
1: मशाल मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
0: ओ
1: मैंने ओके किया हुआ था,
0: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
1: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
0: जी
1: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
0: तो मैंने ओके किया,
1: मैं नहीं बोल सकता था
0: जी,
1: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब का
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: तो उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट ही था तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो उसका सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: ये ऐसे फिल्म करने जा, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।

0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% देर नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही थी। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानिसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो सब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा,
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है, फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है।
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी। मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था।
0: जी।
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी।
0: जी।
1: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर। उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने।
0: जी।
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं। जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है।
0: जी।
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रामनाड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि तो जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद युववाणी कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आईपीएल में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युव वाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

आज की बात में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा क्रम जीवनालोक में आज का विषय है खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल जरूरी है। दोस्तों साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। साथियों क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथियों संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। हर वर्ष यह सप्ताह विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पैदल यात्री हो, चालक हो या साइकिल सवार, सभी को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों सड़क सुरक्षा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण होती है। यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं, स्कूलों में कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन भी सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां सड़क परिवहन बहुत अधिक उपयोगी है, सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों युवा वर्ग इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वे न केवल खुद नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल और कॉलेज सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं ताकि बच्चों में शुरू से ही सही आदतें विकसित हो सकें। दोस्तों हम कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें और नियमों का पालन करें तो हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल एक अभियान है बल्कि यह जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा करने का। दोस्तों गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में बदलाव करके हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले गर्मियों में पानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दोस्तों गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तला भुना मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके बजाय हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, सलाद का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही भोजन समय पर करना और अधिक देर तक भूखे ना रहना भी जरूरी है। दोस्तों इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू, हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय में खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी है तो सिर को ढककर रखें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और धूप का चश्मा या छाते का प्रयोग करें। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों साथ ही स्वच्छता का ध्यान भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। इस मौसम में बैक्टीरिया वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों गर्मियों में पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। अधिक गर्मी होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हल्का व्यायाम और योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

करें, स्वच्छता का पालन करें तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। साथियों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल होना जरूरी है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य के समग्र विकास के लिए खेलकूद और पढ़ाई दोनों का समान महत्व है। केवल पढ़ाई करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है। वहीं केवल खेलकूद पर ध्यान देने से शिक्षा का अभाव रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दोस्तों पढ़ाई का महत्व समझना जरूरी है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन में सफल बनने का मार्ग दिखाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खेलों का भी उतना ही महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। यह हमें अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है। खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। यदि कोई छात्र केवल पढ़ाई करता है और खेलकूद से दूर रहता है तो वह जल्दी थकान महसूस करता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वही जो छात्र केवल खेलकूद में रुचि रखते हैं और पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं वे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बनाने के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने दिनचर्या में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए और कुछ समय खेलकूद के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। इससे ना तो पढ़ाई प्रभावित होगी और ना ही खेलकूद। दोस्तों आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता छात्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही योजना और मेहनत की जाए तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर ही एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे और खेलकूद और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दे।

साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपको याद दिला दें, हमारे प्रसारण आप सुनते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए भी। शाम के 5:30 हो चुके हैं, आइए शुरू करें फिल्म संगीत का सफ़र।

फिल्म संगीत के इस सफ़र की शुरुआत हमने की फिल्म बैराग के उस गीत के साथ जिसे संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ें आप तक पहुंची आनंद बख्शी के बोल। जॉनी मेरा नाम, आइए अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म से वो गीत जिसे एक बार फिर से आप सुनेंगे कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ और किशोर कुमार के साथ इस बार फिर आशा भोसले की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल।

गैम्बलर। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया वो गीत जिसकी धुन बनाई एस डी बर्मन ने, बोल नीरज के।

कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की आप तक पहुंच रही हैं। आर डी बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं गैम्बलर फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, एसडी बर्मन का संगीत, बोल नीरज के।

हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा।

डॉन। इस फिल्म से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हमने आपको सुनवाया, किशोर कुमार की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। रात 9:30 पर सुनिएगा भीष्म साहनी का लिखा नाटक सलमा आपा, प्रस्तुतकर्ता कमल दत्त। रात्रि 8:15 से डगर विकास की हम रिले करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। कृषि जगत में शाम 7:21 से सुनिएगा भेंट वार्ता बकरी आहार प्रबंधन विषय पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंकुर खरे।

0: फिल्मों से चुने देशभक्ति गीत होंगे शाम 6:10 से। लोक संगीत में शाम 6:30 पर आज कलाकार हैं रघुवर दास अहिरवार। सुगम संगीत में सुनिएगा शाम 6:45 पर सुमीति माहेश्वरी की गाई रचनाएं। और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल रात फिल्मी गीतों की फरमाइश मन भावन में होगी पूरी रात 10:30 से। रात 10 कल शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा उस्ताद लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित। आकाशवाणी दिल्ली से स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर और पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर हम रिले करेंगे। कृषि जगत में शाम 7:21 से सुनिएगा कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक क्रम में मशरूम का मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण विषय पर डॉक्टर अर्चना पांडे से जानकारी। लोक संगीत में कल शाम 6:30 से सुनिएगा संगीत में संजीव सिन्हा को। शाम 6 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सारंगा सुबह 10:20 से। विश्व दर्पण कल प्रातः 10:10 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं। उर्दू कार्यक्रम आईना हम रिले करेंगे सुबह 9:30 पर आकाशवाणी भोपाल से। लोक रसधार में तिलोत्तमा विश्वकर्मा और शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत सुनिएगा सुबह 9 से। गुड मॉर्निंग जबलपुर सवेरे 7:20 पर सुनेगा। कृषि सामिकी में फसल अवशेष न जलाएं इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी सुबह 6:45 पर दी जाएगी। श्री रामचरित मानस गान सुबह 6:35 से। चिंतन का प्रसारण सुबह 6:30 पर और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रातः 6:05 से सुनिएगा। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों की और कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल

अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन और महापूजा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए

देशभक्ति फिल्मी गीतों में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एआर रहमान के संगीत से सजा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का वो देशभक्ति गीत जिसमें आवाज़ एआर रहमान के साथ सुखविंदर सिंह की है, बोल समीर के।

देशभक्ति फिल्मी गीत मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्राय चतुर्नवति शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तरप्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।
1: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय रघुवर दास अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से और अपने स्मार्टफोन के जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। आज कलाकार हैं रघुवर दास अहिरवार।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनीति माहेश्वरी के गाए गीत और भजन।

मीडियम वी पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं सुनीति माहेश्वरी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनीति माहेश्वरी के गाए गीत और भजन। अब सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुनते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी। शाम के 7 बजने को है, वक्त है समाचारों का। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलग वेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री

0: मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
11: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
10: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
12: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें थी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार। और बात

0: पुरस्कार मिले।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।

0: हो गया तो दो महीना के अंदर अंदर हो गई है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
3: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर, UPI से।
1: ये लो यार UPI।

0: मैंने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे किसान भैया भौजी हरोखों हमारी राम राम। भैया माई तो छाँव बरगद की दूध जैसी उजियारी, दुख के बदरा घिर आवें बन जाते है वो ढाढ़स धारी। भूखे पेट भरावे लालन पालन करे, अपने सपनन खें भुला के हमरे सपने संवरे। भोर भये उठ चूल्हा फूके दिन भर काम संभारे, थाकी देह मगर मुँह ऊपर ममता फुलवा झारे। माई के आंचल में लागे भैया माई के आंचल में लागे, जैसे पूरो गांव जियत रहे माई दुनिया मा तो बने रहे सुख छाँव। जब जब मन घबरा जाते है माई याद आवे, उसके मीठे बोल की सरगम से हमरो मनवा चैन पावे। बरखा जाड़ा घाम कड़क हो, बरखा जाड़ा घाम कड़क हो, माई डटी रहे अपने दुख को भीतर राखे हमरे दुख हरे। माई घर की जोत निराली भैया माई घर की जोत निराली, सुख दुख की पहचान उसके बिना अधूरो लागे जीवन को हर गान। जिनके सिर पे हाथ माई को, जिनके सिर पे हाथ माई को, ऊ भागन बारे माई सेवा करे जे जन, ऊ सबसे मतवारे। चलो सबे मिल मान बढ़ावें, चलो सबे मिल मान बढ़ावें, माई को सम्मान कैसे भैया उनके चरणन में बसते हैं धरती गंगा ज्ञान। भैया जे कहबे के बाद मनो जे कहें कि सबई के जीवन में अपनी अपनी महतारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहत है, कैसे वो हमारी रक्षक होत है, हमें सभी खतरों से बचाऊत है। बचपन में कोई के मारबे पीटबे से, डांटबे डपटबे से, कहूँ गिरबे से बचात है तो कबूँ चोट लगबे से बचाऊत है। और तनक बड़े भय नहीं तो हमें सभी की बुरी आदतों से बचाऊत है, और भैया दुश्मनों से बचाऊत है सो अलग, और फिर मित्र तो ऐसी है कि अपन है पूरो को रहे थे जे बात कि अगर अपन ने कोनो बात अपनी माई के बताई तो बस बस सबई खो उजागर कब्भू न होन दे है, अपने मन में राखत है और दुनिया में सबसे पहले ओई साथ देवे के लाने हम जनों के खड़ी रहे थे। जे हमारी दोस्त सखा मित्र तो बाद में आत है ना, पर जे हमारे लाने जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाऊत है। सो अपनी महतारी भैया पूरे जीवन की मार्गदर्शक ही होत है, जे कहने में कोनो बड़ी बात नहीं हुई है, और आप सुई समझ रहे हुई हैं जे बात, इमें कोनो बिल्कुल अचरज भी नहीं है। कैसे माँ जैसो निस्वार्थ भाव से सेवा करबे बारो और प्रेम करबे बारो, इस संसार में कोई दूजो नहीं मिल सकत। ओको समर्पण ओको त्याग ओके लालन पालन करबे की जो अद्भुत शक्ति है ओको को नहीं बता सकत भैया। जेई कारण से भगवान से सुई पहले अपनी जीवनदायिनी माँ को हमारे सम्मान करने चाहिए, और हमारे कर ही रहे हैं, पर माँ से बढ़ के ए संसार में अने कौन नहीं है भैया। अब अपनी महतारी तो देखो भैया, महतारी आए मानो अपने देश में हमारे हैं तो हमाओं का कर्तव्य बनत है, यानी जे मातृभूमि जे हमारी जन्मभूमि सुई हमारी माँ है, ये धरती माँ जोन में पल बढ़ के हम इतने को अन्न पानी पियत हैं, और एक तरफ है फिर हमारी गौ माता जौन खो दूध अपन बचपन से ही पिया थे और बड़े होते हैं, इनकी कृपा को छाँव रो अपने जीवन के लाने। अपनी महतारी से अब देखो कम तो बिल्कुल ही नहीं ठहरो है ना। सो आज जे माँ दिवस के दिना हम का करें, धरती माता गौ माता हमारी जे जलदायिनी नदियाँ इन सबई खो पूजबे को दिन आए। भैया माँ और महतारी शब्द में असीम प्रेम और अनुशासन छुपो है। अपनी महतारी ने अगर अपन खे लाड़ प्यार के संगे अनुशासन की बोली भाषा उठबे बैठबे को ढंग ढोर बोलबे चलबे के जे तरीका कारजों को न समझाए होते तो कभी आज आप और हम इतने ऐसे बैठ के बतकाओ कर रहे हो
सोच भी की बात है कि नहीं है भैया, और सबई कुछ सहबे सह के भी वे हमें सुरक्षित करत हैं और हमें एहसास दिलात हैं कि देखो अबे हम हैं, हमारे रहत भय तुम और हों, कौन चिंता करबे की जरूरत नहीं है। और फिर हम का कहते हैं, माँ है ना, माँ देख ले है ना, माँ को तो पता है, माँ को तो बता दे आती ना। इन जैसे शब्दों से भैया मानो हम जग जीत लेबे की ताकत धरत है। जय से जिज्जी हरों, भैया हरों, माँ खो धन्यवाद और अपने आदर भाव समर्पित करबे के लाने आज मई के दूसरे महीना, मई महीना के दूसरे इतवार को मात्र दिवस मनाओ जात है। और आज है 10 मई को दिन, और आज मनाओ जा रहा है मात्र दिवस जानी मदर्स डे। मात पिता से बढ़ के जग में कौनो नैया प्यारो, माँ की गोद पिता का आश्रय है संसार हमारो। भैया आज के जे दिन के लाने मोड़ा मोड़ियन में भी मुतके दिन से बहुत ही जोश रहो। अब हमारे आसपास के मोड़ा मोड़ियन ही कहन लगे कि हाँ कौन एक आओ तो कहन लगो कि हमने तो अपनी जेब खर्च के पैसा इकट्ठे करके चाची माँ के लाने ना घड़ी को उपहार लाओ है। कोई ने बताई कि बे औरे माँ खो सजबे सबरबे की मुतकी चीज़ें देवे बारी बे आई छोटी छोटी मोड़ियाँ और कहन लगी कि देखो चाची और हमने तो जे जे लाओ है अपनी माँ के लाने। तो कौन हो भैया मोबाइल खरीदबे के लाने पैसा इकट्ठा कर रहे, तो कौन ने पिक्चर जाबे की टिकट बुक कर ली हैं, और कछु तो ऐसे हैं कि भैया बे अपने माँ की पसंद की पसंदीदा जगह उनकी यानी घूमबे जाबे की पूरी योजना इसी तैयार कर चुके हैं, पर अब है उनने अपनी माँ को नहीं बताओ है ना। तो खाबे पीबे की बात तो लड़का बच्चन से जैसे ही करो तो बेसो चहक से उठाते हैं और कहने लगे कि हमारे माँ के लाने उन्हीं के पसंद को देना खाना बना है। आज के दिन खो घर के संगे खेतन में काम करबे की छुट्टी सुई अपनी माँ को दे हैं हमारे। अब हमने पूछी कायरे तुम्हारे जी सब करके कमाई को खुश कर दे हो, तो बेसबरी भैया पता का कहने लगे काय नहीं चाची, हमारी माई को अब जे अपनी भावनाएं अपनी जे उनके प्रति अच्छी अच्छी इच्छाएं दिखावे को अब जे ही तो मौ कर रहे थे, और फिर है जे मातृ दिवस माँ को दिन,

मुकाए ना अपनी माँ को अपनी भावनाएं दिखाएं। तो भैया इतने तो भुनसारे से धूम सी मची है आज, कोई गाना गा रहा है, कोई शायरी लिख रहा है, तो कोई मोबाइल पे माई की फोटो खींच खींच के सबई के संगे शेयर सो कर रहा हो। पर हम सबई खो जे बात भी ध्यान धरने हुई है कि हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि, भारत भूमि हमारी असली पहचान है, जौन से हमाओ तुमाओ अस्तित्व है। भैया जब कहो देश यानी भारत माँ पे संकट के बादल यानी गहराएं, तो हमें अपने निज स्वार्थ जाति धर्म से ऊपर उठ के जे धरती माई की रक्षा करबे को महत्व देने हुई है, एकजुटता दिखानी हुई है और जय हमारे असल योगदान भारत माता के लाने हुई है। अब आप सुई देखो पशुधन पालो तो कि नहीं पालो है, बताओ आप और सही समझे हैं, समझ रहे हुई हैं आप और हैं कि हम कौन की बात करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही भैया, हम बात करना चाह रहे हैं अपनी गौ माता की। अब जी मोबाइल देखो भैया अच्छे ठहरे और जे वीडियो और रील बनावे को चक्कर, अब आप सोच रहे हो कि बतकाओ करत कर जी जी जी जी कहा बतकाओ करन लगी। तो भैया अब एक दिन संजय बिरिया हो थो, अब हम तो चले जा रहे थे तो हमने देखी कि एक गैया और की छोटी सी बच्चिया उत ऐसे चले आ रहे, संजय बिरिया हो तो रही हो भैया चले जा रहे अपने घर के यानी अपने द्वार के लाने और घर के रास्ता के लाने। तो हमने कहा देखी कि बच्चिया कछु एक बड़े से बाड़ा में घुस गई, उतें लगी हती बाप पहने कटीरी तार वाली बरवारी, सो बच्चिया हती तो ओ में फंस गई, निकले ही ना पा रही हती। तो उत्ते ही मैं भैया अब का बताएं, अब हम भी कछु नहीं कर पा रहे, देखो तो गैया इतनी रभानी कि उते तो भीड़ सी लग गई। पर जे का हमने देखी कि उते खड़े मुतके जन वीडियो रील बना बना के इते उते मोबाइल से अपने भेज भी लगे, वो बच्चिया छोटी सी बच्चिया की भैया मदद के लाने कोनो नहीं आगे आ रहा हो। फिर हमने दो तीनों ते खड़ी जिज्जी भौजियों की सहायता से बच्चिया को तैसे सुरक्षित निकालवे को जतन सो करो, और वो जतन ऐसो कि बच्चिया सुरक्षित निकल आई। फिर वे माँ बिटिया मूर सी हिलात भई भैया मानो खुशी खुशी और हमें धन्यवाद सो देत भई सी वो तैसे चली गई। भैया कह भी कुछ ही मतलब कि मुसीबत में फंसे की मदद के लाने आगे आओ चाहिए, निस्वार्थ प्रेम कर चलो। जे आज के दिना जानी मातृ दिवस को संदेश आए।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: भैया, हमारे ना सब जने मिलके रहे थे, जानी हमारो पूरा परिवार एक ही साथ रहे थे। अब एक दिन हमारे ताऊ कहन लगे, जैसे तुम्हारे घर सजात संवारत हो, वैसे ही जे पशुन की देखभाल सुई जरूरी है। काहे इतने आओ सबरे मोड़ा मोड़ी। अब देखो, तेज गर्मी तो हो ही रही है ना, बेजा गर्मी हो ही रही भैया, तो जे बकरियन के खान पान को सुई ध्यान धरने हुई है। अब वही टाइम जब ताऊ हमें जे सब समझा रहे थे, वही टाइम पड़ोस से मंगला काकी आई। बे जय जो समझा रहे थे ताऊ, सुन के कहन लगी, सही कहे बड़े भैया, हमार बकरियन खो अच्छो उमदा हार मिल है, तो बे और दूध भी सुई उमदा दे हैं, और फिर बीमार भी तो कम पड़े हैं। उत्ते में हमारी छोटी बहन सोनू बोली, काकी गइयों को आहार तो समझ आत है, पर जे बकरियन खो का दे, जौन से इनको पोषण मिले। काकी बोली, देखो बेटा, इनको हरो चारो खूब भात है, जैसे बरसीम, ज्वार, मक्का को हरो

0: इन्हें देने चाहिए, इनको पानी बार बार पिबात रहने चाहिए, नहीं तो इनको कमजोरी आ जात है। अरे अरे मौड़ी, सब हमई से पूछ गुन ले हो का? अब हम इतो तो बता रहे हैं, अब हम जे कहन आए थे ओ तुम और के जे बतकाओ में भूल ही से गए। चलो चौपाल पे होते हैं, डॉक्टर अंकुर खरे भैया सुई आज आए हैं और बकरी आहार प्रबंधन पे अब बे उम्दा जानकारी सुई देवे बारे हैं, तो चलो उन्हीं से चल के सबई जानकारी ले लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ सुई लेते हैं।
1: किसान भैया हरो, जब अपन खेती के साथ साथ अपने पशुओं को भी जब पालत हैं तो उनको पूरो ध्यान रखवो अपनो काम है, और ध्यान रखवे को सबसे जो पहलो कदम है, पहलो चरण है, वो है आहार प्रबंधन। तो आज अपन बात करें आहार प्रबंधन की, मगर बात हुई है आज बकरियों की। ये विषय पे बातचीत करवे के लाने आज उपस्थित हैं डॉक्टर अंकुर खरे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक पशु पोषण विभाग नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि जगत में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले तो आप हमें जय बताओ कि बकरियों को पालत कैसे है, उनके पालवे की विधियाँ क्या होती हैं?
2: बकरियों को पालने की विभिन्न विधियां हैं और उनमें से प्रमुख तीन विधियां होती हैं, जिसमें से प्रथम जो हम चरा कर पालते हैं, इस विधि में बकरियों को पालना आसान है लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से यह लाभकारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बकरियों के वजन में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण बाजार में इनकी कीमत कम मिलती है। जगह जहाँ जंगल, जहाँ पहाड़ी या ऐसा इलाका है जहाँ खेती नहीं हो सकती है, वहाँ इस विधि से बकरी को पाला जा सकता है और वहाँ पे हमारे कृषक भाई इस विधि का फायदा ले सकते हैं। दूसरी विधि होती है खूंटे पे खिलाकर पालना, जिसमें हम उनको कहीं नहीं भेजते हैं चराने, बल्कि हम उनको वहीं रखकर और हम उनको वहीं पर दाना और चारा देते हैं। इस विधि से ये होता है कि जो हमारे बीमारियां होती हैं दूसरे जानवरों से, जो बकरियों में हमें बीमारियां मिलती हैं, उन बीमारियों पे जरूर हमारी कमी होती है और इसका फायदा होता है, पर इसमें जो हमारी लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी विधि जो होती है चराकर और खूंटे पर खिलाकर पालना, इस विधि में बकरियों को कम से कम 7 से 8 घंटे तक चराने भेजा जाता है। इसके बाद बकरी को घर लाकर उसको कुछ पत्तियाँ और कुछ दाने का मिश्रण खिलाया जाता है। यह बकरी पालन का सबसे उचित विधि है पालने की। इसमें बकरियां स्वस्थ भी रहती हैं, लागत भी कम है और हमारे कृषक भाइयों को इससे मुनाफा ज्यादा होता है।
1: तो बिल्कुल, अपन ने कैसे बकरियों को पालने हैं जा बात तो जान ली हमारों ने, लेकिन डॉक्टर साहब अब जा बताओ कि जैसे अपन बात कर रहे हैं आहार की, तो अब आहार के लाने तो बहुत सी चीजें रहती हैं, मनो मुख्य रूप से का आहार होने चाहिए बकरियों के लाने?
2: इसमें बकरियों के आहार में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि बकरियां एक तो जुगाली करने वाला जानवर है, इसका खाने का जो तरीका है वो भेड़ और गायों से बिल्कुल अलग होता है। ये थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाती है, तो इसीलिए इसके खाने में जो चीज़ें मुख्यतः शामिल हैं वो है सूखा चारा, हरा चारा एवं दाना। हरा चारा इसमें विशेष महत्व रखता है, इसमें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, विटामिन इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अनेक तरह के हरा चारा होता है, जैसे पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां, जंगल की घास, फलियां या सब्जियां, ये इसमें हरे चारे में शामिल होती हैं। इसके अलावा आप हरा चारा कई तरह का खेत में भी उगा सकते हैं, जैसे बरसीम है, लूसर्न है, रिचका है, इस तरह के हरे चारे को हम अपने खेतों में भी उगा कर और हम अपनी बकरियों का पोषण कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सूखा चारा जो होता है, सूखा चारा में जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो सूखा चारा होता है, बकरियों में अक्सर हम भूसे की जगह पर हम पत्तीदार सूखा चारा देना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि बकरियां उसको पसंद करती हैं। तो ऐसा सूखी पत्तियां हुई, अरहर का भूसा, मटर का भूसा, तो ये हम दे सकते हैं। गेहूं का भूसा अगर हमको देना पड़ता है तो हम इसको एक सानी के बनाकर सब मिश्रण करके उसको हम दें, ताकि वो उसको आसानी से खा सके और अच्छे से उसको पचा सके।
1: तो अब जैसे अपन ने इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि जे खिलाएं, मनो मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब खिलाएं, कितनों खिलाएं, खासकर कब खिलाएं, जा बात आप हमें बताएं।
2: आहार की मात्रा बकरी के वजन, उसकी उम्र और उसकी स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे अगर मेमना है या दुधारू बकरी है या गाभिन बकरी है या अगर ब्रीडिंग योग्य नर है, तो उसके सबके लिए मात्रा और समय अलग अलग होता है। दुधारू बकरी को बरसीम और लूसन जैसा पोषक चारा हमको देना चाहिए। सफल बकरी पालन के लिए इस बात की जानकारी रखना जरूरी है कि बकरियों को किस उम्र

0: में और कितना कौन सा चारा देना चाहिए।
1: तो जो नवजात जो मेमना रहे थे उनके आहार प्रबंधन के लाने का अपन को अपनाने चाहिए।
0: नवजात शिशुओं का पोषण सबसे जरूरी है क्योंकि ये आगे जाकर हमारा जो प्रबंधन है इसका हम जीता जागता उदाहरण हमें नवजात पशुओं के पोषण से मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनको जो खीस देते हैं या जो पहला उनकी माँ का दूध होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, उसकी उपयोगिता इनके पोषण में सबसे अधिक होती है क्योंकि उससे इनको पूर्ण मात्रा में प्रोटीन, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए हैं वो खीस में उपलब्ध होते हैं। पर खीस को पिलाने का एक सही समय होता है जिसमें हमें ज़्यादातर देखने को मिला है कि ज़्यादातर कृषक भाई हमारे इसमें ना जानते हुए या ना मालूम होते हुए गलती करते हैं कि हमें इसको जन्म के आधे घंटे के अंदर ही पिलाना होता है। धीरे धीरे इस खीस के पोषक तत्व कम होते हैं और जिसके कारण से हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते।
1: तो ये तो थी कि कैसे खीस को अपन कितनी देर के अंदर अपन दे दें। अच्छा, जैसे जो मेमना है इनकी धीरे धीरे जब उम्र बढ़े, जैसे 3 से 10 महीना के हो गए फिर और इनकी उम्र बढ़ी, तो आप हमें ये बताएं कि किस उम्र में मेमनों को का खिलाने चाहिए।
0: जैसे जैसे ये मेमने बड़े होते हैं हमें इनको दूध से हम इनको हटाते हैं और धीरे धीरे हम इनको चारे और दाने पे लाते हैं, और जितनी जल्दी हम इनको चारे और दाने पे लाएंगे उतनी ही जल्दी इनकी बढ़त होगी, इनकी वजन की वृद्धि होती है। इसके लिए हम बहुत सबसे शुरू में इनके लिए एक स्टार्टर दाना बनाते हैं जिसको हम लोग स्टार्टर दाना बोलते हैं। इसमें जैसे मकई हुआ, मूँगफली की खली, गेहूँ का चोकर, खनिज मिश्रण या मिनरल मिक्सचर, नमक और इसमें फिश मील हम उचित मात्रा में मिलाकर इनको दरदरा पिसवाकर मिलाकर और हम इसको धीरे धीरे देना शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मेमना बड़ा होता है, 4 महीने से 6 महीने के उम्र में आता है, तो हम उसको चना है, मकई, मूंगफली, गेहूं का चोकर, खनिज और नमक मिलाकर एक दाना बनाते हैं जिसको हम लोग ग्रोवर दाना भी बोलते हैं। इसको हम लोगों को मिलाकर और इसके आहार में सम्मिलित करना चाहिए। धीरे धीरे उसको चारा खिलाने की आदत भी डालना चाहिए ताकि वो दूध की ज़रूरतों से उभर पाए, दूध से वो उसको कम जो उसके पोषक तत्व मिलते थे वो इन सब चीज़ों से मिलने लगे।
1: बिल्कुल, तो किस उम्र में मेमनों को का देने हैं जब बात आपने बहुत काम की बताई। अच्छा, अब जैसे अन्य शारीरिक अवस्थाएं होती हैं जैसे गाभन है बकरी या उनकी दूध की जो अवस्था है या नर बकरों को, तो इन सबको कितनों और कैसे आहार देने चाहिए।
0: मादा बकरियां जो कि गाभिन होती हैं उस समय उनको पोषण व्यवस्था उनकी सबसे अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उस समय उनके ऊपर दो तरह के भार होते हैं, एक तो स्वयं के शरीर का पोषक तत्व की ज़रूरत, दूसरी बात जो उनका बच्चा पेट में है उसके भी बढ़त के लिए उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए उनकी खुराक जो है अन्य बकरियों से थोड़ी सी ज़्यादा हमको रखनी चाहिए, उनको ज़्यादा देर चराई के लिए नहीं उनको छोड़ना चाहिए। उनको जो भी कुछ खिलाना है उनकी जगह पर अपन लाके अगर खिलाएंगे तो उनके शरीर की भार की वृद्धि होगी और बच्चे की भी ग्रोथ जो है या जो वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इनको हमको 100 से 200 ग्राम दाना आम बकरियों से ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की ज़रूरतें आम बकरियों से ज़्यादा होती हैं। अतः इस दौरान बकरी के अच्छे किस्म का हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जब बकरी के ब्याने के करीबन 4.5 दिन रह जाएं उस समय पोषण में अतिरिक्त हमको 300 से 400 ग्राम दाना प्रतिदिन प्रति बकरी हमें देना ज़रूरी है। जहाँ तक दुधारू बकरी का सवाल है तो दुधारू बकरी का सामान्य बकरियों से ज़्यादा पोषक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है क्योंकि वो दुग्ध उत्पादन में है। दुग्ध जो होता है वो ज़्यादा पोषक तत्व लिए रहता है इसलिए उस समय पोषक तत्वों की ज़रूरतें भी जानवर को ज़्यादा रहती है। इससे हम दाने का जो मात्रा है वो दिन में हमको 2 से 4 बार तक हमको इनको खिलानी चाहिए। जहाँ तक प्रजनन योग्य बकरे का सवाल है तो प्रजनन में काम आने वाले बकरे को अच्छे और संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। ऐसे बकरे आमतौर पर चरने नहीं जाते इसीलिए बकरों को हरा और सूखा चारे के अलावा 400 से 600 ग्राम दाना प्रतिदिन देना आवश्यक होता है। बकरे को उपयोग में नहीं लाने के समय उसको आहार की में दाने की मात्रा को कम कर देना चाहिए ताकि बकरा ज़्यादा मोटा ना हो जाए और उसकी पोषक तत्व भी पूरे रहें। अगर बकरा ज़्यादा चर्बीदार या मोटा हो गया तो उसको चारा और दाने की मात्रा उसकी आधी कर दें। साथ ही ऊर्जा पैदा करने वाली चीज़ें जैसे मकई, चावल, गेहूं की मात्रा भी कम कर दें।
1: तो जी, तो आपने आहार की बहुत अच्छी बात बताई, और अब चलत चलत आप इतनो और बताएं कि पानी वगैरह कैसे इनको देने हैं।
0: जी, जिस तरह पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से उन्हीं पोषक तत्वों में एक पोषक तत्व जो है वो पानी भी होता है। चारा और दाने के साथ साथ इनको पानी की भी आवश्यकता ज्यादा होती है। सामान्य मौसम में एक

0: 20 किलो वजन की बकरी को करीब करीब 700 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में प्रायतः ये जो ज़रूरत होती है ये 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। गंदा पानी अक्सर कई तरह की बीमारियों को कीटाणु का वाहक होता है, इसीलिए हमेशा साफ पानी ही पिलाएं। और आहार प्रबंधन के कुछ प्रमुख तथ्य जो है वो, बच्चों को अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाना चाहिए। दिए जाने वाले आहार की बर्बादी से बचने हेतु बच्चों को कई बार में दाना देना चाहिए। आहार को वर्षा इत्यादि से बचाव के उचित प्रबंध करने चाहिए। बकरी पालकों को आहार घटकों को उपलब्धता के समय खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे समय सस्ते होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख तत्व थे।
1: तो डॉक्टर अंकुर खरे जी, आपने आज बकरियों के आहार प्रबंधन के विषय में हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: अब इतने चौपाल में डॉक्टर अंकुर खरे भैया की जानकारी सुनबे के बाद कछु तो चले गए, पर मुतके जन सब उतई बैठ के आगे रोजगार के लाने चर्चा सी करन लगे। उते मास्टर जी बोले, भैया हरों, आजकल सरकार ऐसी कई योजनाएं चलात हैं जौन से गरीब और हमारे अल्पसंख्यक परिवारन को रोजगार मिल सकत है। उते सुई सोनू पूछ पड़ी, गुरुजी अल्पसंख्यक रोजगार का होत है? मास्टर जी बोलन लगे, देखो बेटा, जौन परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होत है ना, उनके काम धंधा बढ़ावे की खातिर सरकार मदद करत है। कौनू सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखत है, कौनू बकरी पालन, कौनू मधुमक्खी पालन, तो कौनू व्यवसाय या फिर दुकान खोलत के गुर सीखत है। उते बैठी मंगला काकी बोली, अरे हाओ, अब जे रहीम चाचा को देख लो, जे सुई सरकारी योजना की मदद से बकरी पालन सुई किए रहे, अब तो उनके घर की इतनी उम्दा हालत है कि बच्चन की पढ़ाई लिखाई खूब ही बढ़िया चल रही, और मेहनत और सही जानकारी उनको मिल गई तो आज भी इतने अच्छे सुई अपनो व्यवसाय आगे बढ़ा रहे सो अलग, और परिवार खुशहाल है, जे तो सबसे अच्छी बात। उतई सोनू की बड़ी बहन गुड़िया सुई हती, बोली, काकी, लड़कियन को ई योजना से कछु फायदा मिलत है का? मंगला काकी बोली, काई नहीं बिटिया, सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर पेंटिंग को तो सीख ही सकत है, और जो हुनर तुम में है ओके लाने सुई ट्रेनिंग दई जात है, जौन से लोगों को अब हम अपनी मौड़ियन खो सुई रोजगार मिल सकत है, तुम्हारे आगे बढ़ सकत हो। मास्टर जी बोले, सबसे जरूरी बात योजना को लाभ लेबे के लाने आप और हैं, जानकारी रखने और पढ़ना लिखना आप औरों को आने चाहिए, जे बात सबसे जरूरी है। तबई सोनू चहक पड़ी, हम तो चले गांव में अबई जे सबको बताबे कि रोजगार योजना से जुड़ के अपनी जिंदगी सुधर और सवर सकत है। तन्नक तन्नक पढ़ाई करत चलो, जानकारियों को पिटारा तबई खोल पाहो जब साक्षर बन हो, तो फिर सब हुनरमंद तो हो ही भैया, साक्षर सुई बनो, रोजगार पाओ, गांव खुशहाल बनाओ।

भैया चौपाल में जैसे ही सबने जे बात सुनी, सब नई उम्मीद के संगे अपने कार्यों में लग गए। अब जे ही आशा और उम्मीद आप सबई के जीवन में नव रंग भरे, ऐसी कामना और उम्दा विचार के साथ भैया। अब देखो हो गई हमारे चलवे की बिरिया, तो सबको हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को है। अब हम रिले करेंगे सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम

0: सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
1: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
2: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई

0: हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी। साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
0: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
0: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के

0: रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
0: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
0: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
1: कर्नाटक और तेलंगाना की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं वार्ड मुरीर के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए।

0: एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुँचाएँ। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा, कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आए। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आए, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर PMS पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका NPA नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेमलता सूरबंसी।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
4: 2024 में।
3: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
4: 10,000 का।
3: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
4: जनरल स्टोर पे।
3: तो उससे फायदा है आपको?
4: जी।
3: क्या लाभ मिला आपको उससे?
4: उससे भी हमारी छोटी दुकान होती थी, लगातार प्रयास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाती जा रही, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। PM स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
5: जी नमस्कार जी,
3: क्या नाम है आपका?
5: मेरा सदन कुमार मालवी।
3: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
5: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
3: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
5: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इसमें। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दिए तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा, आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफ़ी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
1: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना गोलेंद्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

0: नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पेश करते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत, आवाज गीता दत्त की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के जरिए भी। अगले गीत का समय हुआ है, ममता। आइए इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़, रोशन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत।

और चलते चलते दिल ही तो है इस फिल्म से, आइए आपको सुनवाते हैं रोशन के संगीत से रोशन, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के भिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
6: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
4: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
7: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for culture program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
4: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
8: We have certainly strengthened our multi-party democratic parliamentary system from 1947 until today. All the changes that have occurred in this country through parliament and state legislative assemblies have been accepted without shedding a single drop of blood, and we have implemented these changes in a very effective manner. This demonstrates that the roots of our democracy run very deep, and our constitution and our judiciary have made a very significant contribution to this.
3: Hamare samvidhan aur hamari nyayapalika ka bahut bada yogdan hai.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. We have more from our correspondent.
2: In the much-awaited second cabinet expansion in the state today, former state president of the BJP, Chaudhary Bhupendra Singh and Manoj Pandey, who rebelled against the Samajwadi Party and joined the BJP, have been included as cabinet ministers. While Krishna Paswan, representing the Khaga Assembly constituency of Fatehpur district, BJP MLA Kailash Singh Rajput from Tirwa seat of Kannauj, MLA Surendra Dilair from Khair Assembly seat of Aligarh, and Legislative Council member Hansraj Vishwakarma have been made ministers of state. Meanwhile, the status of ministers of state Ajit Singh Pal and Somen Tomar has been elevated in the government. Both ministers have been given independent charge. In the 403-member state assembly, the council of ministers is now 60, which is the maximum number. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda. During External Affairs Minister S. Jayashankar's two-day visit to the Caribbean nation, Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in restive Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. Iran has formally submitted its response to the latest U.S. proposal aimed at ending the war in West Asia. Iranian state media confirmed that the response has been handed over, stating that negotiations at this stage will focus on ending the conflict in the region. The development comes as U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Secretary of State Marco Rubio met Qatar's Prime Minister to discuss the ongoing war, highlighting intensified diplomatic efforts as the conflict enters its third month. Meanwhile, Lebanese health authorities said 22 people were killed in Israeli strikes in Lebanon. Our West Asia correspondent has filed this report.
9: The Strait of Hormuz has become the sharpest flashpoint in the standoff between Iran and the United States. An Iranian military official warned on Sunday that countries complying with the US sanctions against Iran will face difficulties when their ships use the waterway. Iranian's Revolutionary Guard Corps further went warning that any attack on Iranian commercial vessels would trigger strikes on US targets across the region with missiles already locked onto their marks. The threats came as a bulk carrier was struck roughly 23 nautical miles northeast of Doha, causing a small fire that was subsequently contained. Kuwait said hostile drones had entered its airspace and were dealt with by its military. Hours later, UAE reported intercepting two drones originating from Iran. Meanwhile, Britain announced it is deploying the Royal Navy destroyer HMS Dragon to the region to join international mission aimed at keeping the strait open. Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
4: In Singapore, performers at a cultural festival this weekend received an unusual reward boxes of mangoes. As India stepped up efforts to promote mango exports through community events, mangoes from different states were presented as reward for songs, dances and musical performances during the Threads of Indian Tradition Festival held at the Nee Soon Public Housing Estate in the northeast Singapore. This was the second mango promotion event organized this month by the High Commission of India in Singapore. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of the Indian Navy's most strategically important commands responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. He is currently serving as the Vice Chief of the Naval Staff. In IPL cricket, Mumbai Indians were 159 for 6 in 18.3 overs against Royal Challengers Bengaluru in Raipur when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to bowl. Earlier, in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Chasing a target of 204 runs, Chennai Super Kings overhauled the score in 19.2 overs. Urvil Patel scored a fiery half-century, making 65 of 23 balls earlier put into bat. Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. And in shooting, Indian pair of Neeru Dhanda and Vivan Kapoor secured a bronze medal in the trap mixed team event as India concluded its campaign on a positive note at the ISSF World Cup shotgun in Almaty, Kazakhstan today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
10: Spotlight. Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. I am Meghna Bose, and today's program will explore the Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana. Over the last decade, India's development story has increasingly been shaped by large-scale investments in highways, industrial corridors, healthcare, infrastructure, logistic networks, and manufacturing hubs. Alongside these economic projects, there has also been a parallel emphasis on cultural outreach, wellness and people-centric engagement. The Prime Minister Narendra Modi's visit

0: manufacturing ecosystem. Official estimates place the total value of projects announced, inaugurated or dedicated during the visit at more than 9,000 crore rupees. And with that, we begin with the first stop of the Prime Minister's visit, Bengaluru. The Prime Minister addressed a significant public meeting in Bengaluru, Karnataka, stating recent electoral successes for the BJP and discussing the broader political landscape in India. Reflecting on the date, May 10th, he honoured the spirit of the 1857 freedom struggle and called for national unity and duty. Let's listen to what the Prime Minister said on the significance of the 10th of May and why he chose the date to conduct the visit.
1: Sathiyo, aaj 10 Mai ki aitihasik tarikh hai. 1857 mein, aaj ke hi din, swatantrata sangram ki पहली चिंगारी फूटी थी. समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले Operation Sindoor ki pehli varshgaant manayi hai.
0: In his speech, the Prime Minister also addressed the global challenges such as the unrest in West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended The Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: Hamare yahan kaha gaya hai ashtadasa puraneshu vyasasya vachanam dvayam परोपकाराह पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है. ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative,

0: which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
0: द प्राइम मिनिस्टर इन रीसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस एंड प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर विद नेशनल प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स. लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड.
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है. मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, साथ

0: साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
0: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
1: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight.

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भीष्म साहनी का लिखा नाटक सलमा आपा, प्रस्तुतकर्ता कमल दत्त।
1: योर अटेंशन प्लीज, हम फ्लाइट 42 पर जो जाम्बिया से कराची जा रही है आपका इस्तकबाल करते हैं। कैप्टन जहीर हमारे कप्तान हैं। जाम्बिया से कराची तक की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में पूरी की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जहाज सुबह 2 बजे कराची हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और सिगरेट वगैरह ना पिए।
2: वाह वाह शकुन, अरे देख दो कैसा नजारा है भाई। जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है और नीचे बादलों के झुंड तैरते जा रहे हैं। और रियली फैंटास्टिक शकुन, धरती पर ये कुदरत के नजारे तो बेशक बड़े लुभावने नजर आते हैं।

0: पर हवाई जहाज से उन्हें देखने की बात ही दूसरी है। अरे देखो तो, इधर देखो, बादल छनते हैं तो नीचे नीला नीला समुद्र कैसा नजर आता है।
1: जानते हो किस वक्त हवाई जहाज कराची पहुंचेगा?
2: मेरी बला से।
0: देर से पहुंचेगा तो और ज्यादा नजारे देखने को मिलेंगे। रात के अंधेरे में ऊपर की दुनिया कैसी नजर आती है ये भी देख लेंगे।
1: इस तरह हम रात के 2-3 बजे तक कराची पहुंचेंगे, इससे भी ज्यादा देर हो सकती है।
0: भाई अब जहाज तो अपना वक्त लेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए हुए, साथ में तुम्हारी माँ जी, हम परदेश में रात को 2 बजे पहुंचे, क्या ये चिंता की बात नहीं है? और सुना है कराची में सर्दी बहुत पड़ती है।
2: अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है भाई, मैंने अहमद अली को तार दे दिया है, हवाई उड़ान का नंबर दे दिया है, सब तफसीलात दे दी।
1: और अगर वो हवाई अड्डे पर ना पहुंचे तो?
2: क्या बात करती हो शगुन, ये कैसे हो सकता है? अहमद अली बड़ा जिम्मेदार आदमी है भाई, बरसों से हमारी जान पहचान है, मेरी कहानियां उसके रिसाले में छपती रही हैं, और फिर वो जानता है कि मैं पहली बार कराची आ रहा हूँ।
1: लेकिन अगर वो नहीं आया तो?
2: अरे कैसे नहीं आएगा, उसे मालूम है कि हम आ रहे हैं। भाई समझने की कोशिश करो, वो अदीब है, लिखने पढ़ने वाला जिम्मेदार आदमी है।
1: लिखने पढ़ने वाले तो तुम भी हो।
2: हाँ तो क्या मैं जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ?
1: मैं क्या जानू।
2: क्यों, इसमें जानने की क्या बात है? देखो शकुन, हर लेखक बड़ा संवेदनशील होता है, दूसरों के दर्द को समझता है, महसूस करता है। हाँ
1: जी, हर लेखक सिर्फ ख्वाब देखता है और ख्वाबों की दुनिया में ही खोया रहता है, या कुदरत के नजारे देखता रहता है। दुनियादारी का कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता।
2: क्या मतलब, मैंने कौन सा काम सोच समझ कर नहीं किया है?
1: जिस तरह तुम 10 साल पुरानी अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़कर आ गए हो, क्या वो सोच समझ कर करने वाली बात थी? यूं भी भला कोई नौकरियां छोड़ता है क्या?
2: अब ये तुम क्या ले बैठी शकुन?
1: और लोग होते हैं अपना नफा नुकसान सोचते हैं, इधर तुम हो कि किसी राह जाते ने तुमसे कुछ कह दिया और तुम घर पहुंच कर इस्तीफा लिखने बैठ गए। अरे यूं भी कभी दुनिया के काम चलते हैं।
2: ओह माय गॉड,
3: हाँ
0: इसे कंबल उड़ा दो, इसे सर्दी की वजह से खांसी आने लगी है।
3: आओ बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। बैठो।
1: इसकी खांसी ठीक कहाँ हुई है? महीने भर से इसकी खांसी चली रही है। उधर माजी के दोनों घुटनों में दर्द रहता है, गठिया का दर्द जाड़ों में और ज्यादा बढ़ जाता है। जो अपने देश लौटना ही था तो 2-4 महीने रुक कर आते, सर्दियां निकल जाती, मौसम खुल जाता, तुम इस बीच भारत में अपने रोजगार का कोई इंतजाम कर लेते और इत्मीनान से हम लोग चले आते। पर नहीं, इत्मीनान से कोई काम करना तो तुम्हें मंजूर ही नहीं है।
2: अब भाई ऐसी भी क्या बात हो गई शकुन, सब काम तो तुम्हारे ही सलाह मशवरे से किया है मैंने।
1: अब तुम पहले ही इस्तीफा दे आओ तो मैं क्या कहूँ। तुमने आकर सुना दिया कि तुम जाम्बिया में एक पल भी और नहीं रुकना चाहते, तो उस वक्त मैं तुमसे क्या कहती? इन बातों के बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, मैं क्या कहती?
2: देखो शकुन, कोई भी आत्मसम्मान वाला खुददार आदमी वही करता जो मैंने किया है।
1: लेकिन जरा बताओ तो, तुम्हें उस आदमी ने कहा क्या था जिस पर तुम मन ही मन इतना बिगड़े थे?
2: क्या कहा था? अगर वो तुम्हें भी वही कुछ कहता जो उसने मुझसे कहा था तो वो तुम्हें भी बुरा लगता।
1: लेकिन उसने कहा क्या था? क्या कहा था? अरे बोलते क्यों नहीं?
2: अब क्या कहा था उसने?
4: हेलो मिस्टर सेगल, गुड मॉर्निंग।
0: हेलो मिस्टर हैरिसन,
4: इट्स ऑलवेज सो नाइस मीटिंग यू।
0: थैंक यू।
4: मैंने अपने वाइफ से कहा, मेरी सहगल साहब मुझे रोज मिलता है।
0: Really?
4: मैं जब सुबह घूमकर लौटता हूँ तो वो किताबें बगल में दबाए यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होते हैं। ऐसा पिछले 10 साल से हो रहा है। मैंने मेरी से कहा, अब तो लगता है प्रोफेसर साहब यहीं का होके रह गए हैं। क्यों प्रोफेसर साहब, आपने यहीं बस जाने का फैसला किया है ना? मैंने मेरी से कहा, अब ये भारत कहाँ जाएंगे, अब ये यहीं बस गए हैं। I told my wife, he won't go back to India.
0: नहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर हैरिसन, दरअसल वक्त गुजरता पता ही नहीं चलता।

0: पर देन एक ना एक दिन तो सबको घर लौटना ही है।
1: अब जाम्बिया आपके लिए परदेश कहां रहा मिस्टर सैगल? अब तो आप यही के हो गए हैं, बच्चा लोग भी यहां बड़े हो रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, यही टिक चाहिए। जहां काम धाम हो वही वतन होता है। अब हिंदुस्तान में क्या रखा है? गुड बाय।
0: देखो शकुन, मैं यहां आप नहीं रहूंगा।
2: भारत जाकर क्या करोगे? वहां नौकरी वोकरी का प्रबंध कर लिया है?
0: अरे पहले यहां से तो निकले शकुन, अपने देश में तो पहुंचे। क्या अपने देश में भी पहले नौकरी का प्रबंध करके जाना होता है? देखो शकुन, हम अपने देश को लौटते हैं क्योंकि वो हमारा देश होता है। क्या पहले से नौकरी नहीं मिलेगी तुम अपने देश नहीं लौटूंगा? तुम भी कैसी बातें करती हो। अपने देश में तो मुझे भूखों रहना भी मंजूर है, अपना देश तो होगा कम से कम। अपने देश की मिट्टी की सोंधी सोंधी महक के लिए मैं तरस गया हूं।
2: हाँ, लेकिन कोई इस तरह से?
0: तुम जानती नहीं, अपने वतन की बात ही दूसरी होती है शकुन। वहां पर कोई कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि 10 साल से यहां पड़े हो तुम।
2: लेकिन
0: देखो, अब तो तुम बिस्तर बांधो बस।
2: ठीक है।
0: अब फिर शकुन यहां रखा ही क्या है? अपने घर परिवार के बीच, दोस्तों यारों के बीच रहेंगे और कहानियां लिखेंगे और दिल का अरमान पूरा करेंगे। देखो शकुन, हर पौधे को अपनी मिट्टी की जरूरत रहती है, समझी? मैदानों में उगने वाला पौधा पहाड़ों पर तो नहीं उगेगा।
2: अब तुम्हारे मन पर सनक सवार हो गई है तो तुम कहां मानोगे, किसी की क्या सुनोगे तुम?
3: May I come in, Mr. Principal?
1: Oh, Mr. Sagal.
3: Yes.
1: Come in. Please sit down.
3: Thank you.
1: What is the problem, Mr. Sagal?
3: Oh, no, nothing. You see, Mr. Principal, I have come to seek your blessings before returning to India.
1: Oh, India?
3: Yes.
1: Kya tumne achi tarah soch liya hai, Mr. Sagal?
3: Ji haan, maine achi tarah soch liya hai. Mr. Principal, you have always been very kind to me.
1: Oh, thank you, Mr. Sagal.
3: Lekin, maine 10 saal Zambia ki khidmat mein bitaye hain. अब जवानी के गिने चुने साल में अपने वतन में बैठकर साहित्य सेवा करना चाहता हूँ।
1: मिस्टर सैगल, इस कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
3: थैंक यू सर।
1: बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सैगल।
3: थैंक यू सर।
1: प्लीज कीप राइटिंग एंड लेट मी नो इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू एट एनी टाइम।
3: थैंक यू वेरी मच। गुड बाय सर। थैंक
2: यू। तुम्हें तो बस सारा वक्त शहर की पड़ी रहती है। अरे क्या बुरा था अगर हम सीधे जाम्बिया से दिल्ली चले जाते?
0: हा?
2: ये भटकन तो ना होती।
0: भटकन? भटकन किस बात की?
2: यही, रास्ते में रुको, सामान निकाल कर किसी दूसरी जगह ले जाओ, दो दिन बाद फिर सामान बांधो। क्या बुरा था, बांधे बंधाए अपने घर पहुंच जाते।
0: अब तुम भी कैसी दिल तोड़ने वाले बातें करती हो शकुन। अरे कराची शहर रास्ते में पड़ रहा था तो उसे देख पाने का मौका हाथ से निकल जाने देता मैं? अच्छा सुनो, एक बात सुनो, भारत पहुंचकर कौन कराची देखने आता, मुझे बताओ तुम। और भाई फिर हींग लगे ना भटकरी, उसी टिकट पर एक नया शहर भी देख लेंगे, क्या बुरा है?
2: कराची देखने का मौका हाथ लगा और तुम्हारा दिल लगा नाचने?
0: अरे शकुन, छोटी सी तफरी है, मुफ्त की सैर है, और फिर सलमा आपा के मुंह से कराची की वो तारीफ सुनी है कि तुम्हें क्या बताऊं।
2: सलमा आपा भी तुम्हारी तरह सिर्फ कहानियां ही लिखती हैं, कल्पना की पतंग उड़ाती फिरती हैं।
0: अरे क्या बात करती हो, सलमा आपा कहती थी नीले आसमान के नीचे धूप में बैठना और पेड़ों के नीचे टहलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था कराची। अरे वो तो कहती थी कि जाड़ों में वो घर के अंदर बैठती नहीं थी।
4: योर अटेंशन प्लीज, अभी कुछ ही देर में हमारा जहाज कराची के हवाई अड्डे पर उतरेगा। सभी मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और सिगरेट वगैरह ना पिए। आपके कप्तान कैप्टन जहीर और बाकी क्रू की तरफ से हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सफर खुशगवार गुजरा होगा। आपकी इतला के लिए कराची का टेम्परेचर इस वक्त 5 डिग्री सेंटीग्रेड है।
0: शकुन,
2: हाँ?
0: अरे जरा बाहर तो देखो, देखो जरा, देखो शहर कैसा जगमग जगमग कर रहा है।
2: हाँ?
0: लगता है सुनहरी कुमकुमों की लड़ियां बिछी हैं।

0: ठीक है ले जाओ चलो कम अंदर से।
1: एक्सक्यूज मी सर
2: जी
1: कुड आई सी योर पासपोर्ट।
2: हाँ जी वो भाई शगुन पासपोर्ट निकालो
3: अभी देखती हूँ ये लीजिए।
1: थैंक यू। आर यू ट्रांजिट पैसेंजर सर?
2: नहीं हम कराची में दो तीन दिन रहेंगे यहाँ पे।
1: यू वेलकम। आप इस रास्ते से आइए।
2: अच्छा शुक्रिया। शकुन तुम एक काम करो तुम लोग इधर बैठो।
3: अच्छा
2: मैं इंक्वायरी से पूछता हूँ कि कोई साहब हमें लेने आया कि नहीं है।
4: शकुन
3: जी माँ
4: बेटा मैं तो यहाँ बैठ रही हूँ से तो अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा
3: तो बैठिए ना आइए मैं आपको बिठा दूँ आइए यहाँ कहीं से चाय का प्याला मिल जाता तो मैं इसे पिला देती।
5: मम्मी कंबल दे दो ना।
3: हाँ बेटे लो ठीक से उड़ो। माँ जी आप भी आराम से यहाँ बैठ जाइए। क्यों जी आपके दोस्त आ गए कहाँ है वो?
2: वो आया होगा जरूर आया होगा ये तो हो ही नहीं सकता कि ना आए लेकिन
3: इंक्वायरी वाला क्या कहता है?
2: इंक्वायरी वाला
3: हाँ
2: वही उसने बताया कि अहमद अली नाम के किसी आदमी ने मेरे बारे में दरियाफ्त नहीं किया है।
3: क्या
2: घबराओ मत शकुन भाई हर जगह के अपने अपने दस्तूर होते हैं। अब यहाँ का रिवाज नहीं होगा शायद कि इंक्वायरी वालों को बताया जाए कि फला आदमी को लेने आ जाएं।
3: हवाई अड्डा सुनसान पड़ा है जी रात के 2:30 बजा जाते हैं किसी को आना होता तो इस वक्त तक आपके पास पहुँच चुका होता।
2: देखो शकुन ऐसी तो कोई वजह नहीं है कि वो नहीं आएगा। अब भले ही शायद यही किसी बेंच पर बैठा बैठा सो गया होगा इंतजार में।
3: सो गया
2: इन अदबी लोगों का क्या एतबार है? अब मैं देखता हूँ किसी बेंच पर पड़ा शायद खर्राटे भर रहा होगा।
3: कोई नहीं आया है जी यहाँ फिजूल में ठिठुरने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई आया होता तो इस वक्त तक आपके पास पहुँच जाता।
6: May I have your attention, please? जाम्बिया से आने वाले मिस्टर सहगल को कोई साहब लेने आए हो तो इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ ले आए। May I have your attention, please? जाम्बिया से आने वाले मिस्टर सहगल को कोई साहब लेने आए हो तो इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ ले आए।
5: मम्मी खांसी नहीं थी खोरी
3: हो चाहे के बेटे घबराओ नहीं।
2: शकुन बड़ा नालायक निकला है अहमद अली। अरे मैंने तो साफ साफ तार दिया था भाई। अब देखो ये ये ये, ये तार की रसीद भी मेरे पास मौजूद है। अब ऐसे भी कोई करता है हद हो गई।
3: अच्छा बताओ तुम्हारे पास उनका टेलीफोन नंबर तो होगा?
2: अरे नहीं भाई एक अदीब क्या कभी टेलीफोन होता है।
3: तो तुम्हारे पास उनके घर का पता तो होगा?
2: घर का?
3: हाँ
2: घर का तो नहीं है लेकिन हाँ अरे भाई दफ्तर का पता मेरे पास है मैं उसी पते पर अपनी कहानियां उसे भेजता था लेकिन लेकिन इस वक्त तो वहां पर कोई नहीं होगा।
3: अच्छा फिर तुम ही बताओ क्या करें।
2: भाई ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर और देख लेते हैं है? देखो एक बात तुम्हें समझा दूं शकुन ये लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि अहमद अली ना पहुंचे जरूर पहुंचेगा।
3: सुनो पता लगाओ ना यहाँ कोई कमरे जरूर होंगे जहां हम रात काट सकते हैं।
2: अब रात हाँ अरे मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ शकुन। हाँ अरे भाई हम सलमा आपा के भाई के घर क्यों ना चलें?
3: सलमा आपा के भाई के
2: हाँ हाँ वो यही सोसाइटी कॉलोनी में रहता है। अरे तुम्हें मालूम नहीं सलमा आपा ने बीसियों बार उसका जिक्र किया है भाई। ओहो मैं भी कैसा अहमक हूँ। अरे अहमद अली के चक्कर में बिल्कुल भूल ही गया था सलमा आपा के भाई को।
3: लेकिन किसी भले मानस को इस वक्त परेशान करना तुम
2: शकुन देखो भाई अब तुम जानती हो कि वो सलमा आपा का भाई है बस।
3: हाँ, हाँ,
2: अब
3: लेकिन
2: तुम, अब तुम यही समझो कि हमारा भाई है हमारा बस। हाँ तुम सामान पर नजर रखो मैं टैक्सी पकड़ता हूँ। हाँ
3: देखो
7: थक
3: गए बेटा बैठ जाओ फिर थोड़ी देर अभी आते हैं पापा टैक्सी लेकर। उठा लो बेटा कुछ भी करो मैं तो बहुत परेशान हो गई तो सर्दी इतनी है कि
2: आओ भाई चलो कम ऑन किड्स यस आओ माई आप आइए हाँ
8: कहाँ चलना होगा सर?
2: हाँ चलना वो सोसाइटी कॉलोनी चली।

0: वही वो जो नई कॉलोनी है ना, हाँ वही।
1: हाँ जी।
0: हाँ अब बस सीधे वहीं ले चलो।
2: बेटा फिर खांसी बढ़ गई ना?
0: इसे अच्छी तरह से कंबल में लपेट लो शकुन, तुमसे कहा है मैंने। हाँ बेटा।
3: पापा।
0: हाँ?
3: यहाँ तो कितनी धुंध है, चारों तरफ बस धुंध ही धुंध है।
0: हाँ हाँ बेटा, अरे यहाँ जाड़ों का मौसम है ना, और कराची समुद्र के किनारे पर बसा हुआ नगर है, इससे क्या होता है, यहाँ धुंध ज्यादा होती है और हवा में तैरती रहती। हाँ, हाँ।
3: पर पापा यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आता, वो बस वो सड़क है और सड़क की धुंधली धुंधली बत्तियाँ।
0: अरे अरे बेटे, यही तो यहाँ की खूबसूरती है
4: पापा। इतनी घनी धुंध तो मैंने कभी नहीं देखी।
2: सुनिए जरा ये ड्राइवर से कहिए ना कि मोटर धीमे चलाए, धुंध में कुछ भी तो नजर नहीं आता।
0: भाई ड्राइवर साहब जरा आराम से चलो दोस्त, ऐसी भी क्या जल्दी है, है?
1: जी।
0: अच्छा बेटी सुनो, कल ना तुम मैंने इस शहर की बिल्कुल दूसरी ही तस्वीर देखोगी। बड़े बड़े समुद्री जहाज, उनके ऊंचे ऊंचे मस्तूल बादवानी किश्तियां, रंग बिरंगी और नीले सागर का बिस्तर है। अरे मैं भी तो कल्पना करके पुलक उठता हूँ।
3: अच्छा पापा।
0: हाँ बेटे।
3: कराची की आबादी कितनी होगी?
0: अब आबादी भाई कितनी, हाँ ये तो मैं नहीं जानता बेटा। हाँ ये मैं नहीं जानता, पर बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी बंदरगाह है यहाँ। देखो देखो देखो देखो देखो वो देखो वो देखो धुंध से लिपटे जगह जगह खड़े पेड़ कैसे नजर आते हैं। शकुन तुम भी देखो कैसा जादुई माहौल है। और बच्चों जब बरसों के बाद तुम्हें याद आएगा ना कि तुम इस शहर से रात को गुजरे थे, है तो रात तुम्हें भुलाई नहीं भूलेगी। तो शकुन
2: मुझे तो यूं भी नहीं भूलेगी जी, मुझसे क्या पूछते हो, ना घर ना घाट ना सिर छुपाने की जगह, बेघर से मारे मारे फिर रहे हैं।
0: अरे भाई तुम यही तो भूल करती हो शकुन, तुम समझती हो कि खुशी सिर्फ आराम में, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अरे दरअसल खुशी तो जोखिम उठाने में, हाँ अबूझ चीजों को बूझने में।
2: छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर भटक रहे हैं और चीजें बूझ रहे हैं।
0: छोटे छोटे बंगले और सामने मैदान और पेड़ों के झुरमुट, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: सोसाइटी कॉलोनी आ गई साहब।
0: आ गई,
1: कहाँ रुकना होगा?
0: हाँ अच्छा तो क्या यही सोसाइटी कॉलोनी है?
1: जी।
0: अच्छा
1: किस नंबर पर आपको जाना है? घर का नंबर क्या है, ब्लॉक वगैरह?
0: भाई वो भाई सलमा आपा के भाई के घर जाना है।
1: जी
0: यहाँ पर कहीं एक लंबा चौड़ा मैदान है, है? हाँ वहाँ पे दिन में बच्चे खेलते हैं। हाँ? अच्छा और देखिए एक बंगला यहाँ पे कहीं है, होना चाहिए, जिसके सामने ऊंचा घना पेड़ है और उसके नीचे एक बेंच।
1: जी
0: भाई यही निशानी तो सलमा आपा ने बताई थी ना, क्यों ना शकुन?
1: जी मैं आपका मतलब नहीं समझा।
0: अरे भाई देखिए ड्राइवर साहब, यहाँ सलमा आपा के भाई रहते हैं, हैं? बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, उनकी बहन सलमा आपा जाम्बिया में रहती है।
1: साहब घर का क्या नंबर है?
0: नंबर
1: मैदान तो यहाँ बहुत से हैं।
0: अच्छा?
1: और पेड़ भी बहुत हैं और उनके नीचे बेंचे भी बहुत हैं। मैं आपको कहाँ ले चलूं?
0: घबराओ नहीं ड्राइवर साहब, घबराओ नहीं, अभी पता चल जाता है। अब इस कमबख्त धुंध की वजह से साफ साफ भी तो नजर नहीं आता, दिन का वक्त होता मैं झट से पहचान लेता।
1: अरे साहब आपको नंबर नहीं मालूम था तो आप मुझे लाए क्यों? मुझे मालूम होता कि आपको पता ठिकाना भी मालूम नहीं तो मैं आपको लाता ही नहीं।
0: बात ये है कि
2: सुनो, सच में तुम्हें नंबर नहीं मालूम?
0: वो अभी पता चल जाता शकुन, घबराने की क्या बात है इसमें, तुम रुको।
1: वो बताइए ना कहाँ जाना है।
0: अरे बिगड़ क्यों रहे हो यार? देखो देखो भाई, एक तरह से हम तुम्हारे मेहमान हैं, हैं? और फिर यहाँ के लोग तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर होते हैं भाई।
1: ना पता, ले चलो सोसाइटी कॉलोनी।
0: देखो दोस्त बिगड़ते नहीं है, हाँ बिगड़ते नहीं है बिल्कुल। और एक बात और सुन लो, जैसा हमारे साथ बर्ताव करोगे उसी से हम जान पाएंगे कि कराची के लोगों के मिजाज कैसे हैं, खुश मिजाज हैं या मिजाज के रूखे हैं।
1: अब बताइए भी जाना कहाँ है?
0: एक मिनट,
2: कहाँ जा रहे हैं आप?
0: अरे भाई यहाँ उतर कर देखता हूँ, अब सलमा आपा ने जो बड़ी सही निशानी बताई थी।
2: देखिए बैठ जाइए ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी।
0: अरे भाई उसमें है क्या, आप उतर कर देखूंगा नहीं तो पहचानूंगा कैसे?
2: यहाँ आपको कुछ पता नहीं चलेगा, किस पेड़ को देखेंगे और किस बेंच को पहचानेंगे आप, फिजूल की बात।
0: ओ, देखने दो, इसमें है क्या, बुरा क्या इसमें?
2: कुछ सोचो जी, तुम क्या कर रहे हो?
0: बात करती हो तुम?
2: परदेश का मामला है और सुनी रात, न जान न पहचान, अगर कुछ हो गया तो।
0: देखो शकुन इतना डरने से कुछ नहीं होता। अब अच्छा

0: एक बात मुझे बताओ, तुम बिना देखे कोई कैसे पहचान सकता है?
1: ड्राइवर साहब, ये आ जाए तो आप हमें वापस हवाई अड्डे पर ही ले चलिए।
2: देखिए, आप लोग जी मुसाफिर हैं, घर का पता मालूम नहीं था तो आप लोग मुझे लाए क्यों?
1: इनका ख्याल था कि छोटी सी बस्ती होगी और इन्हें घर मिल जाएगा।
2: इन्हें तो उन साहब का नाम भी नहीं मालूम जिनके घर आप लोगों को जाना है।
0: अरे भाई, वो शकुन क्या बताऊं, अब भाई दिन का वक्त होता झट से पता चल जाता है। अब तो मन चाहता है किसी के घर का दरवाजा खटखटा ले।
1: आपको तो उनका नाम तक नहीं मालूम है।
0: अरे भाई, ये क्या बात करती हो शकुन, ये धुंध नहीं होती कमबख्त तो।
1: अब बैठ जाइए आप, मैंने फैसला किया है कि हम हवाई अड्डे पर चलेंगे, वहीं रात बिताएंगे, कल देखा जाएगा।
0: शायद यही ठीक होगा। ड्राइवर साहब, मोटर मोड़ दो, वापस चलो हवाई अड्डे पर। यह उनका घर तो यहीं कहीं होगा, पर मैं क्या बताऊं।
1: सुनिए, अगर कोई होटल नजदीक हो तो हमें वहीं ले चलिए ड्राइवर साहब।
2: होटल तो यहाँ पर कोई नजदीक नहीं है साहब।
1: नहीं है? अच्छा, तो फिर हवाई अड्डे ही चलिए।
2: मुझे मालूम होता तो आता ही नहीं।
0: अरे भाई ड्राइवर साहब, देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखिए हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे भैया। वैसे भाई मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है, मैं मानता हूँ शकुन तुम लोगों को मैंने खामखा परेशान किया, पर मैं क्या बताऊं, मुझे तो पूरा यकीन था कि घर मिल जाएगा, वो सलमा आप आगा।
1: छोड़ो ना आप।
0: देखो शकुन, सलमा आपा जब अपने घर का बयान करती थी तो लगता था जैसे किसी अफसाने में मंजर निगारी कर रही है। अरे भाई, आंखों के सामने साफ तस्वीर उभर आती थी, मुझे लगता था जैसे मैं अपनी आंखों के सामने उनका बंगला और बाहर का मैदान देख रहा हूं। रुके ड्राइवर साहब, रोके रोके रोके रोके, अरे हम पहुंच गए भाई, यही जगह है। रुको यार, रोको प्लीज।
2: फिर गाड़ी रोको।
0: रुको यार।
1: क्या कहा?
0: अरे फिर रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए हम।
1: लेकिन आपको कैसे मालूम?
0: अरे भाई यही जगह है, मैं जानता हूँ। ड्राइवर साहब, हाँ जरा सामान उतारी, आइए इधर आइए।
1: सुनो,
0: देखो शकुन, तुम सामान को देखो, मैं जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ।
1: देखो तुम इस तरह से।
0: ओ बस बस, और बात करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जगह पहुंच गए हैं, यही सलमा आपा के भाई का घर है, वही मंजर वही तस्वीर में जाता हूँ।
2: ऐसे तो यहाँ 10 बंगले होंगे साहब।
0: हाँ, अरे भाई अभी पता चल जाता, हम देख लेते हैं।
3: सामान का क्या करें मामा?
1: अभी यही रखो।
0: बिल्कुल यही घर है, अरे और कोई घर तो हो ही नहीं सकता। अभी सलमा आपा के भाई दरवाजा खोलेंगे, लंबा लबादा और सिर पर चिंदिया टोपी होगी और दाढ़ी होगी सफेद सफेद। अरे मेरी आंखें जैसे उन्हें अपने सामने खड़ा देख रही हैं। अरे भाई सुनो।
1: हाँ?
0: अरे तुम लोग यहाँ चले आओ।
1: चलो बेटा
0: चलो। अरे भाई वहाँ बरामदे की बत्ती जरूरी। इधर आओ, यहाँ पे बैठ जाओ तुम।
1: यहाँ
0: बैठिए बैठिए, इधर आइए। हाँ यहाँ बैठ जाओ। अरे बच्चू खांस रही है।
2: कौन है?
0: आलावर से।
2: आलावर।
0: माफ कीजिए आपको इस वक्त जहमत दी, वो बात यह कि मैं सहगल हूँ, प्रोफेसर सहगल जी। दरअसल हम लोग जाम्बिया से आ रहे हैं, अब बात यह हुई कि हवाई जहाज देर से पहुंचा है इसलिए आपको परेशान किया। वो सलमा आपा ने कहा था कि आप सोसाइटी कॉलोनी में रहते हैं, और दरअसल बात ये भी हुजूर कि मैंने अपने एक एडिटर दोस्त को तार तो दिया था पर कोई हमें लेने नहीं आया, तो तभी सोचा आप ही को परेशान करें। अरे यहाँ तो
1: सर्दी लग रही है बेटे। बहुत सर्दी है
4: यहाँ, बड़ी सर्दी है।
0: हाँ बेटा, कोई बात नहीं। वो दरअसल बात ये हुजूर कि हवाई जहाज देर से नहीं पहुंचता तो सब कुछ ठीक हो जाता, आपको खामखा तकलीफ हमने दी।
2: चले आइए।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आओ बच्चों, अंदर आओ। चलो तुम शकुन अंदर।
1: चलो बेटा
0: जी। वो पहले तो हमने समझा कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन सलमा आपा ने आपके घर को बड़ा सही बयान किया था। लेकिन गलती हुई कि मैंने उनसे आपके घर का नंबर नहीं पूछा।
2: अजी हुजूर, बच्चों को अंदर ले आइए, बहुत बहुत सर्दी है।
0: अजी अजी, अब देखिए हम लोग तो बहुत से लोग हैं, आपको इस वक्त जहमत दी। चलो बेटा, चलो चलो चलो चलो चलो आ जाओ। हाँ शाबाश,
5: भगवान आपको सलामत रखे। आपसे आपने तो बड़ी मेहरबानी की है।
6: इसमें मेहरबानी की क्या बात है अम्मा जी, आओ बेटी पहले तुम्हारे सोने का इंतजाम करें।
7: गरम गरम बिस्तर में बेटी सोएगी तो तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी।
5: बड़ा ही भला आदमी है।
6: अरे माँ, सलमा का भाई है। अरे माँ, क्या क्या हमारे साथ बेरुखी से पेश आएगा है?
7: चलिए माँ जी, आपके लिए भी सोने का इंतजाम कर दिया है। आपने घुटने बांध रखे हैं, गठिया का दर्द है क्या?
5: जी हाँ।
7: एक कमबख्त जाड़ों में ये बड़ा बेरहम उठता है। आप भी वो बच्ची के साथ वाली खाट पे सोते थे।
5: भगवान आपका भला करे, आपने ऐसी रात में हमें पना दे दी है, हमारे लिए तो आपका घर स्वर्ग समान है।
6: कोई बात नहीं अम्मा जी।
1: देखिए अब आप और तकलीफ ना कीजिए, हम जैसे तैसे सिमट कर रात काट लेंगे, ज्यादा खाटे बिछाने की जरूरत नहीं है।
6: चारपाइयां मुझे बाजार से लेने तो नहीं जाना
1: जी।
6: आप लोग आराम कीजिए
1: जी।
7: हाँ जनाब, आप फरमाइए।
8: बस साहब, वो हमारी किस्मत अच्छी थी जो आप घर पे मिल गए। वैसे सलमा बहन तो आपका जिक्र करते थकती ही नहीं थी, वही सुनाया करती थी कि बंगले में रहते हुए वो घंटों पेड़ के नीचे बैठी लड़कों को क्रिकेट खेलती देखती रहती थी।
6: कैसी हैं आपकी सलमा आपा
8: जी? जी ठीक ठीक ठीक हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब वो भी आपकी तरह बड़ी नेक सीरत है साहब।
6: अच्छा।
8: देखिए जब उन्हें पता चलेगा कि हम आपसे मिलकर अपने देश लौटे हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। उन्हें भी कहानियां लिखने का शौक है जनाब। अरे आप तो जानते ही हैं, और थोड़ा बहुत शौक मुझे भी है। इसी तरह जाम्बिया में हमारी जान पहचान हुई, मैं उन्हें जरूर खत लिखूंगा और बताऊंगा कि आपने क्या।
6: उन्हें लिखने या बताने की कोई जरूरत नहीं है, रात काफी हो गई है जनाब, और आप थक कर आए हैं। आप भी आराम कीजिए, कल सुबह मुलाकात हो।
8: जी हाँ, मैं कल सुबह उठते ही अहमद अली की खोज में जाऊंगा फिर।
6: सोइए सोइए, वो भी होता रहेगा।
8: अच्छा, आदाब
6: आदाब, आराम कीजिए।
8: जी अच्छा,
6: शब बखैर।
8: जी शुक्रिया। अरे सो गई हो क्या शकुन?
1: नहीं तो सुनो, इन बुजुर्ग ने सलमा आपा के बारे में कुछ कहा?
8: नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं समझता हूं ये अपना एहसान थोड़े जताएंगे कि उन्होंने अपनी बहन के एक अदीब दोस्त को पना दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो, बल्कि वो तो कह रहे थे कि सलमा को कुछ भी लिखने बताने की जरूरत ही नहीं है।
1: जो भी है, बड़े खुदा तरस हैं, बड़े मेहरबान हैं।
8: अरे भाई, आखिर सलमा के भाई हैं, सलमा के भाई।

0: राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak, ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन

0: एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N.S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

टाइम चेक कर लिया है, सिरबुद्ध की घड़ी में 5:07 और 13 सेकंड हुआ है और अभी वर्किंग सेशन 1 से शुरू रहे थे।